शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रमतो प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मन नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाई है। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंछत फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिनसे सर्ब अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ, कोट जोरे।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो सहज केलो, अनद खेलो रहे फेरो पय मेल। नानक गुरशब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ। सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल। कर सेवा तू साध की, हो काटिए जमजाल। होम जग तीर्थ किए, बिचहु मैं बदे बेकार। नरक सुर्ग दोए पुंचना, होए बहुर बहुर अवतार। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी, निहचल को थाओ नाहे। बिन हर सेवा सुख नहीं, हो साक्त आवे जाहे। जैसो गुर उपदेसया, मैं तैसो कहया पुकार। नानक कह सुन रे मना, कर कीर्तन होए उदार। राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मिर्त। दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ। जाओ लाओ हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लाओ दुखन परे। जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया, तौ आनंद सहजे। जेती सियानप कर्म हों किए, ते बंद परे। जो साधु कर्म

मन जीतो जग सारी। त्रिपत्या गाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, टूट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई यो अचंभो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच भय बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते धरनी रहाओ। सात सिमरत वेद बिचारे, महापुरख ने ओ कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लहया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बुझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावै, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूर्ण होत ना कामा, जल तो कबहू ना बुझत, सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, एह सार सुख पूरा, साध संगत जन मरण निवारै, नानक जन की तूरा। गौड़ी माला महला पंजवा, मोको हिबद को समझावै, करता होए जनावै रहाओ। अनजानत किश इने कमानो, जब तब कछु ना सादा, दह दिस लैओ मन दौरायो, कवन कर्म कर बादा। मन तन धन भूम का ठाकर, हाँ इसका एहो मेरा, भरम मोह कै सूझ सुनाही, एह पैखर पै बैरा। तब एहो कहां कमावन परया, जब एहो कछु ना होता, जब एक निरंजन रंकार प्रभु, सब किश आपै करता। अपने कर्तव्य आपे जाने, जिने और रचन रचाया, कहो नानक करण हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा, हार बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाने, एह और है मूसे रहाओ। बरत नेम संयम में रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चरण और है पाई, ऊहा काम न आया। तीर्थ नाए

क्या किश करै के करणै हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागो पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ ना वंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिये जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो। चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो। दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो। हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन में

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै। माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै। नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम सरन बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा। अहन से औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया नदर पई बिगठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवै मन हास्यों ला गया। रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साध रहे बादम अहंकारा। चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोय न देखो मीत। किस सेवो किस देव चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए। सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम भुलाना। कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी गुआरेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान। गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्या ने सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सहि सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दो

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरणगत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ ना, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीने सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवै, बिन गुरे अंत ना पाए अपेवै, आप भुलाए आपे मत देवै, दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी,

हर नाग चले नखो विधासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे, रगत बीज काल नेम बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दै संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जान्या करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राख कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिलै गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाट पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहराओ

जे सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हो मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्या त्या गै कवरे पाए मिलाए सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिलै मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जा रै सो उबरै गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचरिया रमीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामण हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत खोवै नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पिर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पस्म लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर माया मगन परम पदूर नाम विसारे है।

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, ब्रह्म पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सोहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नहीं है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावै माया अर्थी, न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सदगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किसे कै, आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा, सा सालाहनो नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसके हृदय रविया सोए, मन तन सीतन निचल होए। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहा उहा जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम मैं पागे, जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै, जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मन सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, भवन न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास, जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला दुखलाता, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने, जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना स्यों संग निवारै, दस इंद्री कर रखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताकै होए, जा कब दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है।

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नाह प्यारी जा हर के गुण सारे, सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा धन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहिया अमृत गहिया दुबदा मारने वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवे मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना पर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह सुमाए दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कसत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित ने उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रैन सुख सुती जियो अंतरे और तारे, अंतरे और तारे मिलिए प्यारे। आनदिन दुख निवारे अंतर महल पर रावे, कामन गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहागण गुर कह त्या पारे।

राम नाम वा पाराग में अपारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोष नाही सुख दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामनो मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे उच्चे मंदिर महलिया पारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाला पार दयार ठाकरो सदा कीर्तन गावे जै साध संत एकत्र होवे तहां तजै त्यावे कर दया माया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचना नूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एका लेख ठाकर जिने सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुमारिया मोहन तुद सत संगत त्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेड़ ना आवै तू जपै निदाना जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्यावहे मन बचन कर्म जे तो द्यारा दे से सबे फल पावहे मलमूत मूड जे मुग्ध होते

पतत असंख पुनीत कर, पुनः पुनः बलिहार, नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहन हार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधो, त्याय मना मुरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादो, दुख हरण दीन सरण श्री तार, चरण कमल आरा दी है, जम पंथ विखड़ा अगन सागर, निमख सिमरत साधी है, काल मलै दैता शुद्ध करता, दिन सरहण आरा दो, बिनवंत नानक करो कृपा, गोपाल गोविंद माधो, सिमर मना दा मोदर दुख हर, पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वछल बिरदाया, भगत वछल पुरख पूर्ण, मन आचिंदया पाईऐ, तम अंध कूप ते उधारै, नाम मन वसाईऐ, सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भक्ति गाया, बिनवंत नानक करो कृपा, पार ब्रह्म हर राया, चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन धारी, करना मैं समरथ स्वामी, घटघट प्राण आधारी, प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारो, शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारो, रोग सोग सब दुख बिनसै, जपत नाम मुरारी, बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल तारी, गुण गाओ मना अचत अविनाशी, सब ते उच दयाला, विश्वंपर देवन को एक है, सर्व करै प्रतपाला, प्रतपाल महा दयाल दाना, दया तारे सब किसै, काल कंटक लोह मोह नासै, जी जा कै प्रभसै, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण कहला, बिनवंत नानक इच पुन्नी, जब दीन दयाला, गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मल उदम करेहा, मनाए लय हर कंतै, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह साधु मंतै, सखी वस आया फिर छोट ना जाई, एह रीत भली भगवंतै, नानक जरा मरण पै नरक निवारै, पुनीत करै तिस जनतै, सुन सखिए एह पली बिनंती, एहो मतांत पकाईऐ, सहज सुभाए उपाद रहत होए, गीत गोविंद गाईऐ, काल कलेस मिटै भ्रम नासै, मन चिन्हया फल पाईऐ, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आईऐ, सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागन, पेखो थान सवाए, खोज लहो हर संत जना संग, समरथ पुरख में लाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता, सेवड पागी माए, सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे, मेरा मंतन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं अपनड़ा पिर मिलिया, प्रम खोयो सांत सह स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा।

नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनत आप ही जासन। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते ऊजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना अछ अत प्रे प्रीत साध रज रच तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कत न जाहूं जा कही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो का योग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सी तो समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूजे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक कौ आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप देवायो ओवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सक ते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझै सो प्रभ सधू संग लेख

जीवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, प्रगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदन नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोऊ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सोऊ, एक नाम ले मने प्रोऊ। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पासे ती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

काहू ध्यान परमत पछतापै, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक। खात खर्चत बिलशत रहे, टूट ना जाहे भंडार, हर हर जपत अनेक जानो, नानक नाहे सुमार। पौड़ी। खखा खूना कश नहीं, ते समर्थ कै पाहे, जो दे ना सो दे रहो, पावे तै तै जाहे। खर्च खजाना नाम तानो, या भगतन की रास, खिमा गरीबी अंध सहज, जपत रहे गुणतास। खेल बिकस अंध स्यो, जाको होत कृपालो, सदीव गनीव सुहावने, आराम नाम ग्रह माल। खेद ना दुख ना डानते, जाको नदर करी, नानक जो प्रभ पाणिया, पूरी इतना परी। श्लोक। गन मन देखो मन माहे, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम आरोग। पौड़ी। गगा गोविंद गुण रवो, सा सा जप नीत, कहां पे सासा देह का, बिलमना करे उमीत। नह बार

छाड़ छाड़ सगली गई मूर्तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रहै जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते जाको प्रै सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आना कहतो कोए, आजुगा दी हुन होवत नानके कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मनै एह बिन हर दूसर नाहे, नै होवा नै होवना जत का तो ही समाहे। कूलै तौ मन जवावे सरना, नाम तत् कल मैं पुनै चरना। काल काल अनक पछतावै, बिन हर भगत कहां थित पावै। कोल महारस अमृते पिया, नानक हर गुर जां कौ दिया। सलोक घन काले सब दिवस सास, नह बढ़न कटन तिलसार। जीवन लोरे पर मोह, नानक तेउ गवार। पौड़ी गंगा ग्रासै काल तेह, जो सागत प्रभ कीन। अनक जोन जन्मै मरै, आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जे आप देवाए। गणती गणी नहीं को छूटै, काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट पाए नानक ने छपया। सलोक चित चित बहु चरण अरबिंद, ऊंद कवल बिग सात। प्रगट पाए आपै गोबिंद, नानक संत मतात। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दै दिस भ्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ, सा संगमन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता, नानक ज्ञान अंजन जेने तरा। सलोक छाती शीतल मन सुखी, संत गोबिंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ, नानक दास दसाए। पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे। छछा शार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शार स्यान बहु चितराई, संतन की मन टिक टिकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई।

दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता दर्द निवारे जा।

रास पौड़ी तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास तन साचा तेऊ सच सहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा तीरज जस शोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई सलोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुरपुरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक भरै ते नाही जा कै मंतन नाम बसाही नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निद निदान हर अमृत पूरे तै बाजे नानक अनहतूरे सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु पार पज त्रोह मोह मिट नाई जा कहो राखो आप गुसाई पात साहो छत्र सिर सो नानक दूसरे अवर ना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नितनीत पौड़ी फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कलयुग में पाया फिर अवसर चरै नहाथा नाम जपो तो कटिए फासा फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपै बहु भोग रस।

होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो उसी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रहत रह जाए बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हारे औखद सब कट है भाई गुरपूरे बिन बिदना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी वबा वैर न करिय काहू घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रविया गुरप्रसाद विरलै ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहन सगलै ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना माराधु रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की अड़ाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत सगत गावारा जे ही है अंबुद बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन भरे अवहारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे सोधित सोधित सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूल नहारे तुम समराथ्या गंता पारे सरन भरे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होताहू जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू खरा निमाना होत परानी अंदर जापै प्रभ निर्बानी भावै खसम ता उवा सुख देता पार ब्रह्म ऐसोवा गणता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्मना प्रपतियाना सहस भात करै चतराई संग तुहारै एक न जाई सौ सौ जप दिन राती रे जी चलै तुहारै साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक तां को दुख ना व्यापै सरो सलोक हर हर मुख ते बोलना मन उठै सुख होए नानक सब मैं रवरया थान थनंतर सोए पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान होवते आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हाँ छुटकै होए आनंद तेह हाँ नाही तह आप हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हू किया नानक सब किछ प्राप्ते हुआ सलोक लेखै कतै ना छूटी खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्श नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए लालच झूठ बेकार मोह असम पै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए
ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ ਸਲੋਕ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ, ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ, ਅਣਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ, ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ, ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ, ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ, ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ, ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੈ ਆਪ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਬਿਆਪ। ਸਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ, ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਪੈ ਭਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ, ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ, ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बिबेक हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कौ पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग के ते तरे पार जाते ओ हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत हृदवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तोल कश अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमृत वखियान जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तोल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास्त पितर थीवे अग्न माहे होमत पुराण कनक अश्व हैवर भूम दान न्यौली कर्म करे बोवासन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौपी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मनते हुटै सोच करे दिन सियर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू ना बिखिया उटरे जल धोवे बहु दे अनीत शुद्ध कहां होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पत बहु मूच बहुत सियाणप जम का पौ व्याप अनक जतन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोटो पाव दर गै नहीं सजै छूट सनाही।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं ले पा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राख नहार अपार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्तर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख।

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोहो मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहे रह। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पै, सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम। तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेश

आवत जावत जन्म है मर, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तर है संसार। जो तुम पहने तिर प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शती अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म।

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हवताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरै साध सुन रस है। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तर है। साध कै संग लगे पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सबते जाने अपस्तो मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर।

वैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवै निह कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

चार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब कौ हिरै कई कोट पर दुख ना करै कई कोट माया श्रम माहे कई कोट पर देश पर माहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर प्रसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच सब ते नेरै सबहू ते दूर नानक आप अलिप्त रहया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवै मरै कई कोट बौजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घाल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगति लवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ बनास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटे ता पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म ता मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगमय अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसे भूख कवन त्रिपतावे। करण करावन करने हार नानक करते का नहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है। जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाल आशेदा भेद सम

जह आप रचियो पर पंच आकार त्यो गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानके जह अब

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब ऊपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाह दवाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय
ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁਬਿਦ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰਨੀਤ ਮਿਲ ਭਜੀਏ।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रैगुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तो घणो सदा संगार मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहो करत विहाए, जिन किए तिस न जाननी चितवै अन के उपाए। आद ब्याद उपाद रस कबू न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महा नरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै न बूझियै न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाईऐ जो नारचै परपंच। सलोक खड़ शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खड़ शास्त्र कह सिमरत कथा अनेक, उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई शरण दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिलै तोटा हिरै सा संग लिव लाए, खाड़ खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोलै सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिस्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बले हारणै हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइयै तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच्च बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे।

मोहयो स्वाद बेकार, नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शदर अपवीत, हर नाम न जपै करत विपरीत। पारतरे रमै बकै साध निंद, करन सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कै ताई, अग्न निवरै तृष्णा ना बुझाई। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो, जत देखौं तत सोए। मन बस आवै नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संतोख नाम जप लीने। करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत साध दयाल। रसना गुण गावै बेअंत, मन में चितवै पूर्ण भगवंत। हस्त चरण संत टहल कमाई, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद। गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया। तावत मन राखै कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए। सब मैं पूर्ण रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल। नानक प्रभ सो मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान। हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग। कोमल बाणी सब को संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है। गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम। पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो। हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ। दिन बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम। नानक ऊना देखिए, पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप। दसे दिशा रव्या प्रभ एक, धरने आकाश सब मैं प्रपेख। जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल। सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद। संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिरसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव। मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव। टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम। दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम। शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन। आप तरिया कोटंब स्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम। गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो न डोलता, पूरा किया प्रभ आप। दिन दिन चढ़े सोआया, नानक होत ना घाट। पौड़ी
पूर्ण महापूर्ण प्रभ एको करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब उपर जाका हाथ गुण निदान गोबिंद गुर किया जाका होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब जन नहार संत सहाई सरन योग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा न बुझी है सिमरो हर के चरण पतो दरन नाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राए मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उधार किलबे काटा हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हल्त पल्त मुखी उजला नैपो है तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन पजया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदर सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रभ अपना नानक तसैरवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावै कोए महला चौथा हम है माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हम मैं मैल बिख उतर हर अमृत हर ओर तार सब कार्य तन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आईंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई गुरमुखा नु फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई सलोक महला चौथा विनावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया सलोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मन तन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरखिया गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़ी है तू करे सो सच्चे होए सी ता कायत कड़ी है सलोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगाना
ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਸਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮ ਕੀ ਜਿਉਂ ਬੋਲਣ ਤਵੈ ਸੁਹਨ ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਨ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋ ਸੱਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੁਧ ਧਿਆਹੀ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਛਡਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅੱਖੀ ਤਰਨ ਲਗਨ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵੰਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਜਿਸਨੋਂ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ ਤਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੜ ਜਾਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜਿਆ ਜਾਣੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹਉ ਮੈਂ ਭਾਰ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸਨੋ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਹੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ ਸਭ ਆਪੇ ਆ ਵਰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਲਵ ਕੱਟੇ ਤਾਸ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਦਰ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਭਾਵੈ ਕੂੜ ਯਾਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸੱਟੀਆਂ ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜਿਆਰੀਆਂ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਜਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਓਏ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪੈ ਨਾਏ ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੁਆਵ ਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜ ਆਏ ਓਏ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵੈ ਨਿਤ ਤਿਹਾ ਪਾਏਨ ਓਏ ਤਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈਏ ਵਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਵਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਵਰਤਦਾ ਜਿਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਜੇ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੱਥ ਤੜੈ ਕਰ ਕਰ ਮੰਗਾਏ ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੁਲੰਮਾ ਭਾਜ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀਐ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ਪੌੜੀ
जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए, गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे अपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए, श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई जो वंदन हर हर नाम ते आवै, हर हर नाम रमत सो संजम हर नामे ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावै, जो चित लाए पूजे गुरमूर्त सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की तस करता मार देवावै, फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै। नरक कोर मोहे कालै खड़िया जो तस्कर पाए गलावै, फिर सतगुर की सरनी पवै ता उबरै जा हर हर नाम ते आवै। हर बाता आख सुनाए नानक हर करते ए वै भावै, महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म न मन्नै ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझै अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया। ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै ना पाया, ओह घर घर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया। गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया। जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो ओन लाहा मूल सब गवाया। पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपरे आया। गुरसिखा वड्याई पावै गुरपूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा। सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके। ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया, गुरमुख बख्श जमाइया न मन मुखी मूल गवाया। सब को बीजे अपने भले नो हर भावै सो खेत जमाया। गुरसिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करतै मार कढ़ाया। किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया। जन नानक नाम आरा दया आप तरिया सब जग

सिर जोरा अमर है, नित देवे भला। जोरा दाख्या पुरख कमाम दे, से अपवित अमेद खला। काम व्यापक शुद्ध नर, से जोरा पुछ चला। सतगुर कै आखे जो चले, सो सतपुरख पल भला। जोरा पुरख सब आपो पाया, नो हर खेल सब खिला। सब तेरी बणत बनावनी, नानक पल भला। पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो, अथाहो है अतुल क्यों तुलिया। सेवड पागी जे तो त्याय दे, जन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है। ओ नांदर होर मुख होर है, बिख माया नो चख मर दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा। सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही, तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचर कवे राइयन मन मुख बेताले। सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखै, ओह आप वरतै अपनी वथ नाले। जन नानक एक ना गुर मेल सुख देवै, एक आपे वख कड्डै ठगवाले। महला चौथा। जिन्ना अंदर नाम निधान हर, तिनके काज दईये आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर।

किया। सब जन को आए करै रह रास, गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेवा तुल सुख पाया। गुरपुरे दान दिया हर निचल, नित बक्से चढ़े सवाया। कोई निनक वड्याई देख ना सकै, सो करता आप चाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगता नो सदा रखदा आया। पौड़ी तू साहेब अगम दयाल है, वरदाता दाना, तो जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई। तू है सुगड़ में रह मन पाणा, मोह कुटुंब दिस आमदा, सब चल नहारा आवण जाना। जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माणा। नानक साहित आए तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। सलोक महला चौथा। अगों दे सत भाओ ना दिचै, पिछों दे आख्या काम न आवै। आद विच फिरै मनमुख विचारा, गली क्यों सुख पावै। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। ता अप्यो पीवै शब्द गुर केरा, सब काड़ा अंदेसा भ्रम चुकावै। सदा आनंद रह दिन राती, जन नानक अंदर हर गुण गावै। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिखिया खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवै। उद्यम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरन आवै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। पौड़ी जो तुद सच ध्यान दे, से विरले थोड़े। जो मन चित एक आराधते, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। तुदनों सब ध्यान दी, से थाए पए जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुर से वे खांदे पैन दे, से मोए मर जमे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कड्डै मुख कोले। मन खोटे दईए विछोड़े। सलोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला, खेदो लड़ा। तिन वे मुख वे मुखै नू पाया, पास ना देई कोई बहन जगत मैं। गुह पढ़ सगवी मल लाए, मन मुख आया। पराई जो निंदा चुगली, नो वे मुख करके भेजिया। ओथे पी मुह काला, दुहा वे मुखां दा कराया। तड़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे पौली पौंदी। फावा होए कै उठ कर आया, अगे संगति कुड़मी। वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया। हलत पलत दो बह गए, नित भुखा कूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बै आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो सच है मार पचाया। एहो अखर तिन आखिया, जिन जगत सब यो पाया। महला चौथा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवै, तिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहिब कै कर वथ होवै, सो नफर हथ आवै। अणहोंदी किथों पाए, जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगियै। सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की। फिर लेखा मंगै ना कोई। पौड़ी नानक विचारै संत जानो, चार वेद कहंदे। भगत मुखै दे बोल दे, से वचन हो मंदे। प्रगट पहारा जापदा,
ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ ਮੁਗਧ ਨਾਰੋ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ।

निंद करै त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई, जन नानक हर यारा दया तिन पैरी आण सब पाई। महला चौथा, सतगुर सेती गणत जे रखै, हलत पलत सब तिसका गया। नित चहिया पाए चगू सुटे, चखदा चखदा चढ़ पया। नित उपाव करै माया तन कारण, अगला तन पी उड गया। क्या ओ खटे क्या ओ खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैरै नाल जे वैर रचाए, सब पाप जगतै का तिन सिर लया। उस अगे पिछे टोई नाही, जिस अंदर निंदा मोहे अंब पया। जे सोयने नो ओह हथ पाए, ता खेहू सेती रल गया। जे गुर की सरनी फिर ओ आवै, ता पिछले औगुण बख्श लया। जन नानक अंदर नाम ते आया, हर सिमरतो किल विख पाप गया। पौड़ी, तू है सच्चा सच तू, सबदू उपर तू दीबान। जो तुद साहित्य आए दे, सा सेवन सच्चे तेरा मान। ओना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिनी गुरमुख सा लाहिया, सच शब्द निशान। सच जे सच्चे सेव दे, तिन वारी सद कुरबान। सलोक महला चौथा, तुर मारे पूरे सतगुरु, से ही हुण सतगुर मारे। जे मेलन नो बहु तेरा लुची है, ना देई मिलन करतारे। सत संगत टोई ना लहन, वे संगत गुर विचारे। कोई जाए मिले हुण ओ नानो, तिस मारे जम जंदारे। गुर बाबे फिटके से फटे, गुर अंगद कीते कूड़ियारे। गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हथ एना विचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्ज सब सवारे। जो इच्छा सो फल पाए सी, पुत हन लखमी खड़ मेले हर निस्तारे। सब निदान सतगुरु विच, जिस अंदर हरि उर धारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस लिखिया लिखत लिलारे। जन नानक मांगै तूड तेन, जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिन को आप दे।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथा निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुकट ना सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए।

जन नानक को सब सो जी पाई, हर दर किया बाता आख सुनाए। महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन नंद का, मोह फिके थुक थुक मोह पाई। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाही। जिन गुर गोप्या अपना, से लेंदे टहा फिराही। तिन की भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कूकाही। ओना दा आख्या को ना सुनै, नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे था ओ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै, रहंदी खोंदी सब पत गवाही। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही। हर तिनका दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। तुर करता आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक ना मारा तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया, ते जन की वड्याई वड्डी होई। तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्तिया लोई। तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया। गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई। अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया। आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी, काया कोटिया भार है अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले। नाम निदान हर बन जिये हीरे परवाले। विण काया जे होर थै तन खोज दे, से मूड बिताले। से उजड़ परम पवाई है, ज्यो झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग मैं होया। नरक कोर दुखू है, ओथे पकड़ ओह टोया। कूक पुकार को ना सुने, ओह औखा होए होए रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लहा मूल सब खोया। ओह तेली संदा बल्द कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। हर वेखै सुनै नित सब किश, तिदू किश गुजा ना होया। जैसा जैसा बीजै सो लुणै, जेहा पुरब किनै बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछै तर गया, जो लोहा काट संगोया। जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड भागियां सोहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राए। अंतर ज्योत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच ज्योत। गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेव कड्ड खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया एको ओत पोत। एक देखिया एक मन्या, एको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस दिन के हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे। हर दरगह ते मुख उजले, तिन कौ सब देखण जाए। जिन निरपौ नाम ते आया, तिन कौ पौ कोई नाहे। हर उत्तम किनी सरेविया, जिन कौ तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पहनाई है, जिन हर मुठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों, दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक कौ हर मेल जन, तिन वेख

गुर पूरे हर प्रभ सेवया मन वजीवा दाई। श्लोक महला चौथा। जिन्ना अंदर उम्र थल से ही जन सूलिया, हर जाने से ही बिराओ हाओ तिन विटो साध कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमावे हाओ गुलम तिना का गोलिया। हर रंग चलू लै जोर ते तिन पिनी हर रंग चोलिया। कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा। औगणी भरिया शरीर है क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है मलह मैं कंडे धोए। सच वणंजै रंग स्यों सच सौदा होए। तोटा मूल ना आवै लहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी सलाही सच सलाहना स सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै स सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी आराध्या से जाय रले सच नाले। स सच्चा जिनी ना सेव्या से मन मुख मूड बेताले। ओह आल पताल मोह बोल दे जो पीता मद मतवाले। श्लोक महला तीजा। गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। भाणे चलै सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

मंत्र बताया हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानी है दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

और उल्क चोला, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योत पावै सो करे कराया, नानक वज

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया नू।

अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर सोभा महा उत्तम बाणी। जे पुरख सुनै सो होए निहाल, नानक सतगुर मिलै पाया नाम धन माल। महला चौथा, सतगुर के जी की सार ना जापै, के पूरै सतगुर भावै। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै, जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै। सतगुरे आखै सो कार कमावन, सो जप कमावै। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावै, विन सतगुर के हुक्मै जे गुर सिखा पासो कम कराया लोड़े। तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवै, गुर सतगुर अगै को जियो लाए कालै। तिस अगै गुर सिख कार कमावै, जे ठगी आवै ठगी उठ जाए। तिस नेड़ै गुरसिख मूल न आवै, ब्रह्म विचार नानक आख सुनावै। जीवन सतगुर के मन मन्ने, कम कराए सो जंत महा दुख पावै। पौड़ी, तू सच्चा साहब अत वड्डा, तोहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिलै सो तुद मिलै, तू आपे बख्श लै लेखा छड्डे। जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड्डे। तू सच्चा साहेब सच तू, सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यो पावै त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां, राय कमाल दी मोज दी की वार। की धुन उपर गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा, हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान। तिस जन कै बलिहारण, जिन जपया प्रभ निर्वाण। जन्म मरण दुख कटिया, हर भेटिया पुरख सुजान। संत संग सागर तरे, जन नानक सच्चा तान। महला पंजवा, पलके उठ प्राहुणा, मेरे घर आवो। पाओ पखाला तिसके, मन तन नित पावो। नाम सुने नाम संग्रह, नामे लिव लावो। गृहो तान सब पवित्र होए, हर के गुण गावो। हर नाम वापारी नानका, वडभागी पावो। पौड़ी, जो तुद पावै सो भला, सच तेरा भाणा। तू समय एक वरतदा, समय समाणा। थान थनंतर रव रहया, जी अंदर जाना। साध संग मिल पाई है मन सच्चे भाणा। नानक प्रभ शरणागति, सत सत कुरबाणा। सलोक महला पंजवा, चेताई ता चेत, साहेब सच्चा सो धनी। नानक सतगुर सेव, चढ़ बोइथ पौजल पार पाओ। महला पंजवा, वाउ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार, नानक नाल ना चलनी जल बल होए शार। पौड़ी, से उबरे जगै विच जो सच्चै रखे, मोह डिठै तिनकै जीवियै हर अमृत चखे। काम क्रोध लो मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ अपनी हर आप रखे। नानक चलत ना जापनी, को सकै ना लखे। सलोक महला पंजवा, नानक सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभ आवै चित। जित दिन विसरै पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा, नानक मित्राई तिस

अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरण आई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए, नानक लद्दा तिन सवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी, सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी, जो जन पेटै साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी, मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी, तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया पौड़ी, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा, पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वछल तेरा बिरद है जो जुग वर्तंदा, नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा। श्लोक महला पंजवा, चिड़ी चौकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा, घर मंदिर खुशियां तही जह तू आवे चित, दुनिया किया वड़ियाईया नानक सब को मित पौड़ी, हर तन सच्ची रास है किने विरले जाता, तिसे प्राप्त पाए रहो जिस दे विधाता, मन तन पीतर मौलिया हर रंग जन राता, साध संग गुण गाया सब दुख है खाता, नानक सोई जीविया जिन एक पछाता। श्लोक महला पंजवा, खखड़ियां सोहावियां लगड़ियां अककंठ, ब्रह विछोड़ा तनी सियो नानक सह सह गंठ। महला पंजवा, विसारें दे मर गए मर पे ना सके मूल, वे मुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल पौड़ी, सुख दान प्रभ एक है अवनासी सुनिया, जलथल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया, ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया। श्लोक महला पंजवा, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। महला पंजवा, अठे पहर पौंदा फिरै खावण संदड़ै सूल, दोजक पौंदा क्यों रहै जा चित ना होए रसूल पौड़ी, तिसै सिरे वो प्राणी हो जिसदे नाओ पल्लै, एथे रहो सुहेलिया अगे नाल चलै, घर बंदो सच धर्म का गढ़ थम अहलै, ओट लहो नारायण दीन दुनिया चलै, नानक पकड़े चरण हर तिस दर गै मल्लै। श्लोक महला पंजवा, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, देवन हार दातार मैं नित चितारिया, निखुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया, नानक शब्द अपार तिन सबके सारिया। महला पंजवा, सिखो शब्द प्यारो जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी, ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने, जम कै पंथ ना पाई है फिर ना ही मरने,
जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उचरै साध जन अम्यो चलै चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने। श्लोक महला पंजवां। सतगुर पूरै सेवै दुखां का होय नास नानक नाम आराध्य कारज आवै रास। महला पंजवां। जिस सिमरत संकट छुटै आनंद मंगल बिसराम नानक जपियै सदा हर निमख ना बिसरो नाम। पौड़ी। तिनकी सोभा क्या गणी जिनी हर हर लद्दा सादा सरनी जो पवै सो छुटै बद्दा। गुण गावै अबनासीयै जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्दा। नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा। श्लोक महला पंजवां। कामना करही अपना फिरै अवता लोए नानक नाए विसारै सुख नेहा होए। महला पंजवां। बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ। पौड़ी। एह निशानी सा

खारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाजो से।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर्य चंद करै उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

बाद सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगिया पावै। बिखिया जो सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते इस ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्ही है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तन साच पिछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन पए सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन का ओ रव रहे कबीरा। गौड़ी गुआरे री अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कह कबीर राम नाम पिछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर ताज कतकाहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रह आप

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहू कहल। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहू खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देवी देवा। तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए। अपन कया ना लेही, सर जियो काटे निर्जियो पूजे। अंतकाल कौ भारी, राम नाम की गत नहीं जानी। पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले। पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया। बिखिया सो लपटाना, गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे। ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रही है। बौना पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है। गुरमत मनुआ असर रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल शेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल सिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनख चढ़ाई है, एह जग बेदया भाई। दैद सिर बूंडी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे। सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे। तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना। गुर प्रसाद अगल पई अवर, ना तर था बेगाना रहाओ। निवर दूर दूर फोन निवर, जिन जैसा कर मान्या। अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिए, ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना भारी रहाओ, अर्ध उर्द दो तै नाही। रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, आगमा गोचर रह निरंतर। गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने। सत्संगत मिल रही है, गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे। पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गूण परी कट पीतर। इन बिद टांड बिसाहे हो, ऐसा नायक राम हमारा। सगल संसार की ओ बनजारा,
रहाओ। काम क्रोध द्वय भय जगाती मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना। कहो डडिया

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है, देखो बिचारी, इसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निरासी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत् नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई। ए संसा मोको अंदन व्यापै, मोको को ना कह समझाई। रहाओ जह बर पांड पिंड तै नाही, रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता, एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै, जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक, को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती, ओआ का मरम ओही पर जाने, ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा, सुन गुफा मैं आसन बैसन। कल्प बिबरजित पंथा मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी, मर्तना सोग बियोगी। रहाओ खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी, मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही, अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधकाई। गई बना मन माहो, कर छोड़िया जाए जुलाहो। रहाओ गजी ना मिनिये, तोल ना तुलिये, पाचन से अडाई। जो कर पाचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया, चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकस, नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी, कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित कट नाम नाई उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया, मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिलै सिद्ध पाई है, के ओहो जोग के भोग, दुह मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है, एहो तो ब्रह्म विचार, ज्यो कासी उपदेश होए मान समर्ति बार। कोई गावै को सुनै, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए। गौड़ी
जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नाही बिचारे ओरे उनमत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगा ने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बौरा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नामन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम ओसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
जोन शाड जव जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ। रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता, लक्षव राशि जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांचिए, डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मने ना की जयास। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान, रहाओ क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान, जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए, जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा भले, जेहकट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए, रस और रहाओ और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चेतिया, राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहार कमनी, लोचन परी ले सासा, उर ना पीजै पगना खिसै, हर दर्शन की आसा। उडहो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारणो, हर की पद करी जय, एक आधार नाम नारायणो, रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास, कं तुरसी का बिरवा, माझ बनारस गाऊ रे, ओवा का स्वरूप देख मोही गुआरनो, मोको छोट ना आओ ना जाऊ रे। तोहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड भागो, रहाओ। बिंद्रा बान मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जा का ठाकर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी बारवी गौड़ी पूर्वी बारवी, बिपल बस्त्र केते है पहरे, क्या बन मध्य बासा, कहां पया नर देव।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंते डरप सती के साच पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवै कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावै, तास बसै मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन अखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह, ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमस सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जो पावा, सो कट शाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एहे, चचा रचित चित्र है पारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छाक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे, आस जार पार जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा उपायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देख या टल टल कत ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंट ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखे जाओ कोई दूर न परे फंक बिचार है ता फल फंक सबै तन फार है बब्बा बिंदे।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंत्र भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा, ससा सो सहसे सवार सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख शाड परम सुख पावा, तब एह त्रियो कंत कहावा, हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तब है मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई, ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापै बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै, सोग मिटै सब ही सुख पावै, खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है, पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार, जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जा न गा सोई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिती कबीर जी की, श्लोक पंद्रह थिती सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार, साधक सिद्ध लख जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ, थिती अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत् निजसार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मल, हर कीर्तन में अंदन जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो विचार, घट में खेल अकट अपार, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए, द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास,

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवे कोए जरा मरण दुख फेर ना होए शाट खट चक्र शहू दिस्ताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगे रहो कर्म तर्म की सूल ना सहो सातै समकर बाचा जान सातै सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो परवान छूटै संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निद्राया गुरगम ज्ञान बतावे भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवे द्वार कहो साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिले गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर नायावै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसे मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै हैराए बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वह नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कट में जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट में दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

हरा गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुआरेरी एको ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

काल मुहूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित मैं सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग परिसो कही है केते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जो जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साहेब।

भूता जी हों तुत बिने अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी, से जन युग मैं सुखवासी। से मुक्त पै जन हर त्याया जीओ, तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जीओ, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जीओ, ते हर हर रूप समासी। से तानो जिन हर त्याया जीओ, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनका नेका अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड्यावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सिरहिट सब यो पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला पहला, चौपदे कर दूजा। सुन वड्डा आखै सब कोई, केवड वड्डा डीठा होई। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकराईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा

तो आसा महला पहला जे दर मांगत पू करे महली खसम सुने भावे तीर्क भावे तके एक वडाई दे जानो जोत ना पूछो जाति आगे जात ना हे रहाओ आप कराए आप करे आपो लामे चित धरे जा तू करन हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप यो पाए आपे दे आपे दुरमत मने करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुखा नेरा विच्चों जाए साज प्यारा आप करे अवरी को साज ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछना ले आसा महला पहला ताल मदीरे कटके काट दोलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का पाओ जति सती कह रख उपाओ नानक नाम विटो कुर्बान अंधी दुनिया साहेब जान रहाओ गुरु पासों फिर चेला खाए ताम प्रीत वसे कर आए जेसो वरिया जीवन खान खसम पछाण सो दिन प्रवान दर्शन देखे दया ना होए लय दते बिन रह ना कोए राजा न्याओ करे हथ होए कहे खुदाए न माने कोए मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किस दरगह पावे मान आसा महला पहला जेता शब्द सुरत तुन तेती जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना अवरना दूजा कहो माई साहेब।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्रिप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो मन नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दो जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस्पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई।

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर से मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखै तिही रहना, दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता,

मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे।

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अटकी चै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे, मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इं क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बंतन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हाउ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी

साहुरडे तन सच पिछाणिया सहज सुभाए अपना फिर जाणिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सधी से जरवे पतार आसा महला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे मोहे भरम भुलाई मेरे साहेब हाँ कीता तेरा

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दोपदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिया लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतिया दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रह जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल से ती थिर न रह

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर शेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद पावे नानक ता को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई जे को दरगह बहुता बोले नौ पवे बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, क्यामत शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करै किया, सिफती रता सद बैरागी, जुवे जन्म न हार, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धार, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस न होई रहा हो, सकता सीहो मारे पैवगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चे बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगमे अपारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कौ गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सांस शरीर, गुरमुख ता कौ लगे ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नान गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहि समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरै, गुर प्रसादी पव जल तरै, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हर सो चित लाए।

तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच

मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडभाग, दूजे पाए पवै बिख माया, भागहीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सैन।

ऐसी भगत बने आई हाँ हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अनदिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए। आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा। आया मरण तो राहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुवे खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सच्चे सच्यार महल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदन नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वस्जा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन परगास सच्चा पाई है। राग आसावरी कर सोलवें के दो महला चौथा सुधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकाऊं रहाओ। हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हाँ हर बिन रह ना सकाऊं हाँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बैराग बिरगत पायो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रह ना सके तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग सरन जगदीशर प्यारे मोहे सरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੁਖ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸ ਪਉ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ, ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਐਸਾ ਦੇਖ ਬਿਮੋਹਤ ਹੋਏ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਧਰੋਹੇ ਰਹਾਉ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ, ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪੈ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿਨ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਵੈ, ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਵਾਏ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर सब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब

हर हर राए। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरा संग सहाए। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लै सधावै अणहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै सो नानक आख सुनावै। भगत जना को उसका आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्तो तुझ पाहे अमान, बिष्टा अस्त रक्त परेटे चाम, इस ऊपरले राखियो गुमान, एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक, कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान, आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन न रह कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ, चार पहर चौ जुगे समाने, रैन पई तब अंत न जाने, पंच दूत मिल परो विछोड़ी, परम परम रोवे हाथ पिछोड़ी, जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया, आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान, हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई, दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो, गुर कृपा ते एह मत आवै, जन नानक हर कै अंक समावै, आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई, सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा, सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राए, सुख रैण में हानी सह सुभाए, आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय पाई, पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ, तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड परानी, जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ, दिन ते सर

कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा। नवनिध तेरा सगल निदान, इच्छा पूरक रखै निदान, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वस्या लगे न दुखा रहाओ। जो तू करै सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान, जा तुद पावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहेबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव, आसा महला पंजवा। निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा, अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

वे मोहताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर छोड़ होश रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनयाशा देव प्राणी, तेस्यों लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, त्रिप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक कहो गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निदान।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त घोर अंध

गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युगत न मोरी, गुर नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवां ते पदे दो, हर रस पीवत सद ही राता। आन रसा खिन मैं लै जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद। आन रसा मैं व्यापै चिंद, हर रस पीवै अलमस्त मतवारा। आन रसा सब हो चेरे रहाओ, हर रस की कीमत कही ना जाए। हर साधु हर सुमाए, लाख करोरी मिले ना के। हे जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाख पए बिस्माद। नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कत छोड़ ना जाए। नानक गीदा हर रस माहे, आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ मोह मिटावै, छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए निमाणी सेव कुमावै, ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटै तेरो सहसा। सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म शुद्ध बिखत्या सिनवारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा, आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक, सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवां दो पदे, पही प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै नाकाम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संजम तर्म ना कुमाया। सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा। शरण परे की रखो शर्मा, आसा महला पंजवां। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। तू साजन संगी पर मेरा, काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा, रहाओ राख राख शरण प्रभ अपनी। अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु। हम तुमरे बाल गोपाला, आसा महला पंजवां। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यों मेरो मन मान्या। ताप मुआ बिख खाए, रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापै। राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागै। चरण कमल शरण आए, संत प्रसाद पए कृपाला। होए आप सहाय, गुण निधान नित गावै नानक। सहसा दुख मिटाए, आसा महला पंजवां। औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पयासा मिटे विसूरे। रहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवां, बांशत नाही सो बेला आई। बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई। ओहना बाला बूढ़ा भाई, रहाओ नानक दास सा सरनाई। गुरप्रसाद पौ पार पराई, आसा महला पंजवां। सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सां सदा सुख पावै। किल विख जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म। सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवां, जा का हर स्वामी प्रबेली। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली, रहाओ कर कृपा चरण संग मेली। सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली। हर सिमरत नानक पई अमोली, आसा महला पंजवां।
काम क्रोध माया मत मद सर ए खेलत सब जुवै हारे सत संतोख दया धर्म सच ए अपने ग्रह भीतर वारे जन्म मरण चुके सब पारे मिलत संग पयो मन निर्मल गुरपूरै लैखन मैं तारे रहाओ सब की रेन होए रह मनुआ सगले दिसै मीत प्यारे सब मध्य रव्या मेरा ठाकरो दान दे सब जी समारे एको एक आप एक एक एक है सगला पा सारे जप जप होए सगल साथ जानो एक नाम ते आए बहुत उधारे गहर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किश पारा वारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे आसा महला पंजवा तू बेअंत अवगत या गोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करै चतराई जा सबके तुझे मजार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार देह सुमत सदा गुण गावा मेरे ठाकर अगम अपार रहाओ जैसे जनन जठर मैं प्राणी ओरे ता नाम आधार आनंद करे साथ साथ सुमारे ना पोहै अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनस्यो प्रीत निवार चरण कमल सेवी दे अंतर गुरपूरे कै आधार गृह मंदिर महला जो दिसै ना कोई संगार।

हर आज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे कामना आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको वंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। और आगे आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याणप जन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच ना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतां टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ, प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर रिजावे, राम नाम जप हृदय जापे, मुखते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मंतन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ, ਕੂਕਰਤ ਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ, ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛੱਪ।

ओरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुटे ओरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटियोरी दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुने ओरी कर कृपा प्रभ नगर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुन री सखी ए हमरी काल प्रभु आप सिंगार सुवरण हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना तरता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया कान कुंडलिया वस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिनाले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक परपुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाईऐ पद निर्बानी आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास धरी तिन माया

आए सर्व सुखा बने तेरे ओले भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाओ हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सोग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई यो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवां घर में सुख बहर फुन सूखा हर सिमरत सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझे सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया पंडित नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी वलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आसमन धारी। जप तप संजम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन अरादा। किशु ना जाना मत मेरी थोरी, बिन मत नानक ओट प्रब तोरी। आसा महला पंजवा, हर हर अखर।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगिश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जौ सो प्रसन्न होयो परम मेरा, ता दुख परम कहो कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोहे निर्गुण को लिहो उधारी रहाओ, मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओह करमा, जा कै मन वसिया हर नामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ, मोह परम बहुजोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंदने अंधकूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुजै हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ शरणाई, इहां सुख आग्यागत पाई, आसा महला पंजवा।

आहौ सेवक तेरा शरण गही प्रभु गुनी गहेरा रहाओ। तू मेरा जीवन तू आधार तुझ है पेख बिकसै कौलार। तू मेरी गत पत तू प्रवान तू समर्थ मैं तेरा तान। आंदन जपो नाम गुण तास नानक की प्रभ पै अरदास। आसा महला पंजवा रोवन हारै झूठ कमाना हासा सो करत बेगाना। को मुआ का कह कर गावन को रोवै को हासा सुपावन रहाओ। बाल व्यवस्था ते बरदाना पहुंचना मूका फिर पछताना। त्रिहो गुण मैं वरतै संसारा नरक सुरग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सफल जन्म ता का परवान। आसा महला पंजवा सोए रही प्रभ खबर ना जानी पोर पया बहर पछतानी। प्रे प्रेम सहज मन अंध धरोरी प्रभ मिले बेकी लालसा तां ते आलस कहां करोरी रहाओ। कर मैं अमृत यान निसारयो खिसर गयो पूम पर डारयो। साध मोहे लादी हंकारे दोष नाही प्रभ करण हारे। साध संग मिटे भरम आधारे नानक मेली सृजन हारे। आसा महला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे। तू चित आवै तेरी मया सिमरत नाम सगल रोखया रहाओ। अनक दुख देवै अवरा कौ पहुंच ना साकै जन तेरे कौ। दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहजानंद बसै बैरागी। नानक की अरदास सुनी जै केवल नाम हृदय मैं दीजै। आसा महला पंजवा मन तृप्तानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल। संत प्रसाद भली बनी जा कै गृह सब किश है पूर्ण। सो भेटिया निरपै धनी रहाओ। नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महा बिकराल। ठाकुर अपने किन्नी दात जलन बुझी मन होई सांत। मिट गई पाल मन सहज समाना नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा ठाकुर स्योजा की बनियाई भोजन पूर्ण रहे अगाई। कछु ना थोरा हर भगतन कहो खात खर्चत बिलशत देवन कहो रहाओ। जा का तनी अगम गुसाई मानुख की कहो के चलाई। जा की सेवा दस अष्ट सिधाई पलक दिष्ट ताकी लागो पाई। जा कहो दया करो मेरे स्वामी कहो नानक नाही तिनकामी। आसा महला पंजवा जो मैं अपना सदगुर ध्याया तब मेरा मन महा सुख पाया। मिट गई गणत बिना सियो संसार नाम रते जन पे भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत तौ प मिट्यो मेरे मीत। जो मैं उठ गई प्रभ तेरी ता पूर्ण होई मनसा मेरी। देख चलत मन पे दिलासा नानक दास तेरा प्रभासा। आसा महला पंजवा अंदर मूसा लाई टुकाई गिरत कु मैं खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू ना सिमरै सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया निचर गृह बांधया काल कै फांस सख्त सर सांधया। बालू किनारा तरंग मुख आया सो थान मूड निचल कर पाया। सा संग जप्यो हर राए नानक जीवै हर गुण गाए। आसा महला पंजवा दो तुके नौ उनकै संग तू करती केर उनकै संग हम तुम

उनकै संग तू गृह मैं माहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मन महत, उनकै संग तुम साख जगत, उनकै संग तेरी सब थाटी, उस बिना तू होई है माटी। ओह बैरागी मरे ना जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, जोड़ विछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा। ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसै ना हम कड़िया, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हम कौ दुखे। अवरना को मारन वारा, जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ। ना उस बंधनो ना हम बांधे, ना उस तंदा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सदकेला। ना उस सोच ना हम कौ सोचा, ना उस लेप ना हम कौ पोचा, ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा, जाहो निर्मल ता हम जचना। हम किश नाही एक ओही, आगे पाछे एको सोई, नानक गुरखोए परम पंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा। आसा महला पंजवा। अनक पात कर सेवा करिए, जियो प्रांतन आगे धरिए, पानी पखा करो ता जब मान, अनक बार जाइए कुर्बान। साई सुहागन जो प्रभाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ। दासन दासी की पनिहार, उनकी रण बसै जी नाल, माथे भागता पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग। जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म अर्पो सब होमा, गर्भ मोह तज हो बोरेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आरा दो, दिन सरैन ए सेवा सादो, पहे कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए, प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए, प्रभ की प्रीत

चिंत प्रभु की प्रीत एहो भव जलता रहे, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डराए, प्रभु की प्रीत सगलो उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपको कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओठ प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवां, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवां, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगसार।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिने अवर ना जानै। कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्स सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवां, सगल सुख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साधका संग, जिस भेड़त लागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद ओ आनंद पावै, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावै, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकी पगरेन। जाको भेट्यो हर हर राय, ताकी गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवां, आठ पहर उदके सुनानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही। बहर बहर तिस लागै पाई, साल ग्राम हमारे।

सदा बैकुंठ जहां का चवर सब ऊपर झूलै ताँ का धूप सदा प्रफुलै काट काट संपट है रे जाका अपग सभा संग है सादा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिसही लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ो हर साल गिराम कहो नानक गुर की नोदान आसा महला पंजवा पंचपदा जे पेंड है लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रहियो जनते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लिखा भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ताके अरहद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने जब जब जीवा सारंग पाने करण करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जां कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग आस

की तब तहरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचै मन मुख मूर आखा गुरु नानक बहा पकर हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहां उहां कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाई है गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। साज जना के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भव ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली पांत सब सहि समाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई है साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बिनासे सतगुर की सरनाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड़े भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला सोजन हो वासदा निहाला आसा महला पंजवा सतगुर सच

जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहेब कै मन पावै। वदी वेल बहु पीड़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहु मान बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण कहो नानक गुर कौ कुर्बान। आसा घर अठवां।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सत सार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख्या पार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाँ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया। रहाओ कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम धन गुण गाओ लाभ पूरा गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ता के वडपागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा। रहाओ दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाईए जग दुत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाईए मन माहे निधाना, जां कहो तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया। रहाओ वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तम परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जी ठहरंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी। रहाओ परता कह सो मानिए, एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेट हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जो मन के परमा, भ्रम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे। रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ। रहाओ सगन अप सगन तिस कहो लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु भावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगमय अगमय अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के ब्योहारी। अवर बिसारी बिसारी, नाम दान गुरपुरे दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे न्योर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवां। जिसनों तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने। दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाल लेखे बैसै, लेखे लैंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण ओटाहा। आसा महला पंजवा, अपुष्ट बाते पई सिजरी। दूत दुष्ट सजनई, अंधकार मैरतन प्रगासियो। मलीन बुद्ध हशनई, जाओ कृपा गोबिंद पई। सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोई ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खबतो नाही, साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने, अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो, जन नानक हर शरणई।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक कहो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रैन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरे चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे

जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागे नाही मोहकम फौज ठली रे, कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाए की रे, बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मनते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उड़हारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सास संगानी रहाओ, पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी, चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकुर गौरो नानक सरन पछानी, राग आसा महला पंजवा घर बारवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार, एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बूझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ, महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारिए दुख ना जम पर होए, नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याय हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे एक स्यो लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्यावै तरण कौ संसार, कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण सरन दयाल तेरी तू निमाने मान, जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग, खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग। हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याय सो प्रभ, त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप, त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार, चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा उद्यम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन मैं राम नामा जाप कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ, दया करो कर्म अपने को यह मनोरथ सुवाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाहे, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੈ ਮੱਜਨ ਹਰ ਜਨ ਤੂਰ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਪਉ ਨਾਸੈ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਲ ਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮੈਰਿਆ ਸਮਾਏ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਵਾ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਏ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਐ ਕਲਯੁਗ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ ਅਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਹ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੈ ਥਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਸੋਈ ਕਰੈ ਜੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇਹ ਹਰ ਦਰਸ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੇਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀ ਸੰਗਾਰੇ ਨਰਕ ਭਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਵ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਵਰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਰਹਾਓ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਬਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਹਿਨ ਗਹੇ ਮਿਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਮਨਮੁਖ ਸਤ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸੰਗੇ ਤਿਲ ਮਰਮ ਨਾ ਲਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤ ਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਆਹੇ

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो, अन दिनो प्रभति आवो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम।

चरण लाग। प्रभु गोपाल दीन दयाल पतत पावनो पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी खेलरी दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु खिनहु उठतायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तजायो। खिनहु जोग ता बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा कर सतारवां आसावरी एको अंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां गहड्यो मूड नर हां अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पै री सखी थिर थिर चित थिर हां बन ग्रिव समसर हां अंतर एक पिर हां बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां कहो नानक लोग या लोगी री सखी आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां दृढ़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुरचरान हां तौ मिलिय गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अनपरान हां रयो सर्वथान हां लयो जम भयान हां पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान लैनो जिसम थान हां पै पावक पार प्राण हां। निज करत सह थान हां हर रस रसै मान हां लाथी तिस पुखान हां नानक सह समायो रे मना। आसावरी महला पंजवा। हर हर हर गुनी हां जपिय सह तुनी हां साधु रसन पनी हां छूटन बिद सुनी हां पाइय वड पुनी मेरे मना। रहाओ खोजै जन मुनि हां सर्व का प्रभ धनी हां दुलभ कल दुनी हां दुख बिनासनी हां प्रपूर्ण आसनी मेरे मना। मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यों प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां। गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निदान लहो हां। सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां। मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां। अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना। रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगता शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां। अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूं हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां। निमख ना विसर हां तिस बिन क्यों सर हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। कारण करन तू हां अवर न सुजै मूं हां करै सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना। रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जपते छुटे आप हां तपते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना। एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां।
आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सब के सब तिस सुझे हां पतत उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्म मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन से मन की लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कार्थ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर आव घट सरवरन आवै बके न बोले हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाद लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जै स्यो राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मोरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावां देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योतिष पावे सोफन होए सुन पारथर नानक कह बिचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूजे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साच धनी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमति एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुर सब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रखे ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो न कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला
ਨਦਰ ਕਰੇ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੂਜੈ ਆਪ ਗਵਾਵੈ, ਬਾਣੀ ਬੂਜੈ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੇਖ ਅਸੰਖ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਨ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਐਸਾ ਸੁਰਤ ਵਖਾਨ, ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਪੜ ਪੜ ਭਾਰ, ਲੇਖਾ ਸੰਖਾ ਲੇਖਿਆ ਪਾਰ, ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਜਗ ਬਾਧਾ ਜਮਕਾਲ, ਬਾਂਦਾ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਨਿਭੀ ਤੁਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਏਕ ਲਿਵਲਾਏ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨ ਨਾ ਮਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਜ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਧਰ ਸਾਜੀ ਗਗਨ ਆਕਾਸ, ਜਿਨ ਸਭ ਥਾਪੀ ਥਾਪੋ ਥਾਪ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਪੁੱਛੈ ਬਖਸੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਪੁਰ ਸਾਗਰ ਮਾਣਕ ਹੀਰ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਚਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰਪੀਰ, ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਗ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹਉ ਮਾਰੀ, ਜਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾਇਆ ਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਭ ਫਿਰੈ ਹੰਕਾਰੀ, ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨ ਕੋਏ, ਜਗ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ ਗੁਣ ਰੋਏ, ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਤ ਖੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਮਹਿੰਗੋ ਮੋਲ ਪਾਰਿਆ ਫਾਰ, ਅਟਲ ਛਲ ਗੁਰਮਤੀ ਧਾਰ, ਪਾਏ ਮਿਲੈ ਭਾਵੈ ਪੈਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਏਕ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਮਿਲਰ ਹੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਸਮਝ ਸੂਝ ਸਹਿਜ ਕਰ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਪੂਜੇ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵੈ, ਕੌਣ ਮਰੈ ਕੌਣ ਰੋਵੈ ਉਹੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸਹਿ ਸਿਰ ਤੋਹੀ, ਰਹਾਓ ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵੈ ਦੁਖ ਕੋਏ, ਸੋ ਰੋਵੈ ਜਿਸ ਬੇਦਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬੀਤੀ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਤਾਰੇ ਤਰਨਾ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮ ਗਤ ਸਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਗੁਰ ਬੋਇਥ ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਤਰਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਆਪ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਤ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸੂਤਕ ਜਗ ਸ਼ੋਤ, ਦੁਰਮਤ ਬਿਨ ਸੈ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਤ, ਜਨ ਮੂਵੇ ਬਿਨ ਭਗ ਸਰੋਤ, ਮੂਵੇ ਕਉ ਸਚ ਰੋਵੈ ਮੀਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਰੋਵੈ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸਹਿਜ ਸੋਚੀਤ, ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਪਉ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਭੀਤਰ ਏਕ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹੁ ਸੰਖ ਅਸੰਖ, ਬਿਨ ਭੈ ਭਗਤੀ ਜਨਮ ਬਿਰੰਥ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਲ ਪਰਮਾਰੰਥ, ਆਪ ਮਰੈ ਮਾਰੇ ਪੀ ਆਪ, ਆਪੋ ਪਾਏ ਥਾਪੋ ਥਾਪ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਈ ਜੋਤੀ ਤੂੰ ਜਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭਰਾਤ, ਸੂਤਕ ਅਗਨ ਪਖੈ ਜਾ ਖਾਏ, ਸੂਤਕ ਜਲ ਥਲ ਸਭੀ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਜਨਮ ਮਰੀ ਜੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਜੈ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਗੁਰਮਾਨੈ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਐਸਾ ਸਾਹੋ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ, ਸਾਚੀ ਨਜ਼ਰ ਏਕ ਲਿਵਤ ਰਹਿ, ਰਹਾਓ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਰਤਾ ਪੈਕਾਰ, ਸਿਫਤ ਸਹਿਜ ਕਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਟ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤਾ ਨੂਪ, ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਦੇਵਾ ਸਗਰ ਸਰੂਪ, ਮੈਂ ਸੋਤਨ ਪੱਲੈ ਸਾਚਾ ਖੂਟ, ਪੰਚ ਤੀਨ ਨਵ ਚਾਰ ਸਮਾਵੈ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਕਲ ਤਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੋ ਉਲਟ ਪੁਰਾਵੈ, ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਨਾ ਆਖੀ ਸੂਜੈ, ਜੇਵਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਬੂਜੈ, ਬੇਕਾ ਮਾਤਾ ਜਗ ਸੋ ਲੂਜੈ, ਉਤਮ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮ ਹੋਵੈ, ਗੁਣ ਕੌਤਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇ ਹਰ ਲਾਲ, ਮਨ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤਸਕਾ ਮਾਲ, ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲੀ ਮੈਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਰਹਾਓ ਅਹ ਨਿਸ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਸੁਥਾਨ, ਤਿਨ ਪਵਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਸਾਚਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਤੇ ਸੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਾਰਸ ਭੋਗ,
पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई, टाहे ओसारै हुक्म समावै, हुक्मे वरतै जोत इस पावै, गुर बिन पूरा कोई न पावै, बालक बिरद ना सुरत प्राण, पर जोगन बूढ़ै अभिमान, बिन नामै क्या लैस निदान, जिसका अंतन सज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे सेवड भागे, नानक गुर की चरणी लागे, आसा महला पहला।

प्रमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साज पछाण अंतर की गत गुरमुख जाण साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख महला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। केले वेख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेल। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अह निसो हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जान दुख मिटै सच शब्द पछान। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हो मैं डन सह राजा मंगे दान, बंधन सबदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए, बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंध ना पाई, राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एको ओंकार, सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महलां अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर, आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस रहाओ, जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास, एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शुहारे खांदिया, मान से जड़िया, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे, बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए, राम न कबहू चेते ओ, हुण कहण ना मिले खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछै सुख, एक ना एहो लिखिया बै बै रोवै दुख, जो तिस पावै सो थीऐ, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सैनाई, कहां सो तेग बंद गाढ़ेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके, ऐथै दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवै पाई रहाओ, कहां सो घरदार मंड मैला, कहां सो बंकसराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हर मां, होइया शाही माई, इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवै नाही, मुया साथ ना जाई, जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना होवा अंधा, किनना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई, ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई, एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी, जिनके बंके करी ना आया, तिनक्यो रैण विहानी, आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है, दुख सुख तेरा पाना होवै, किसथै जाई रुवाई है, हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाईऐ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला, घर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावै आदमी बंद है कर बारा, जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांदी है, जे रहना होई, पिंड पवै जियो चल सी, जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो, है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो, तुम कहो कौन रोई, धंधा पिटो पाई हो, तुम कूड़ कमावो, ओह ना सुनई कत ही, तुम लोग सुनावो, जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना तानी दना होई,
जे चलदा लै चलिया के संपै नाले तां तन संचो देख के बूझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो औगुण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर वैसी किरस कमावो तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवे सत

पत होए सफल तिन्ना का जन्म है, तिन माने सब कोई रहाओ। हम मैं मेरा जात है, अत क्रोध अवमान शब्द मरै ता जात जाए, ज्योति ज्योत मिले भगवान। पूरा सतगुरु पेटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवै निध पाया भरिया खुट भंडारा। आवै इस राशि के वापारी है जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवै सो तन पाए तनांतर शब्द विचारा। भक्ति सार ना जाननी मनमुख हंकारी, तुरो आप खवायन जुए बाजी हारी। बिन प्यार है भगत ना होवई ना सुखोए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है गुर भक्ति मन तीर। जिसनो भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय को नाम वसै हो मैं दुबदा मार। भगतां की जात पाते को नाम है, आपे ले सवार उसदा सरनाई तिसकी। ज्यों पावै त्यों कार्य सार, भगत निराली अलाह दी जापै गुर विचार। नानक नाम हृदय वसै पै भक्ति नाम सवार, आसा महला तीजा। आन रस मैं भुलाया बिना मैं दुख पाए, सतगुर पुरख ना भेटो जे सच्ची बूझ बुझाए। ए मन मेरे बावले हर चक साध पाए, अन रस लागा तू फिरै बिरथा जन्म गवाए रहाओ। इस युग में गुरमुख निर्मले सच नाम रह लिवलाए, विण कर्मा किश पाई है नहीं क्या कर कह आ जाए। आप पछाण शब्द मरै मन हो तज विकार, गुरसरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नाम है सुख ना पाई है ना दुख विचों जाए, एहो जग माया मोहे वे आपिया दूजे भरम भुलाए। दुहागणी पिरकी सार ना जानही क्या कर करें सिंगार, अंदन सदा जल्दिया फिर ऐसे जरवै ना पतार। सुहागणी महल पाया विचों आप गवाए, गुर सरनाई गुर शब्दी सिंगारिया अपने सह लैया मेलाए। मरना मनो विसारिया माया मोह गुबार, मनमुख मर मर जमै पी मरै जमदर होए खुआर। आप मिलाए नो से मिले गुर शब्द विचार, नानक नाम समाणे मुख उजले ते सच्चे दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए, इन बिद नगर बुठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाओ। साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मुहकम गुर ज्ञान विचार। नाम खेती बीजाओ भाई मीत, सौदा करो गुर सेवो नीत। सांत सहज सोके सभाट, सहवा पारी एक थाट। जे जिया डन को लै ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप। वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरम कर आवो। सतगुर साहो सिख मन जारे, पूंजी नाम लेखा साज समारे। सो वसै इत कर।

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। तदै तार कला।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया हम मूर्ख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुर हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जब अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे हाँ मांगाऊं सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वणज है गुर शाहो साबासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जारा राम राजे सब भांडै तुदै साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करै विचारा जन नानक हर बख्शिया हर भगत भंडारा हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो हम मूर्ख किशु ना जानहा के पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो ज्यों पावे त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहु ना चलिया जन नानक नाम आरा दिया आराध हर मिलिया जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगे आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन वत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे किश हाथ किसै दै किश नाही सब चले चलाए जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिल जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर पीजै राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजै हर करता सब किश जानदा सिर रोग हथ दीजै जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है
ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ, ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈ ਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੈ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे, बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ताल बटावे। खिसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कहो जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंद पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तर सब हरे। मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤਕੂਲ ਲਵਾਇਆ।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहने ना पायो, बिन सतगुर कहने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौं आया हौं गया, हौं जमया हौं मुआ, हौं दिता हौं लया, हौं खटिया हौं गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं च पापुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरीऐ हौं विच धोवै, हौवें जाति जनसी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाना। हौं विच माया हौवें छाया, हौं मैं कर कर जन तो पाया। हौं मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान मिहूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिऐ लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा। हौं मैं इहा जात है, हौं मैं कर्म कमाहे, हौं मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हौं मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए, हौं मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हौं मैं दीर्घ रोग है दारू पिए समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जन इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदै पैर न रखियो, कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै, पथ परवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी सवजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सोहे, अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे, जिनकी लेखै पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया, जां सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जां हो करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं प्राकृत है, सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पे ओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अतै ओमिया विचार अगै विचारी है, मोहे चलै सो अगै मारी है। सलोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत जोग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी सच मैं अच्छा साच रह, सबको सच समावै रिग कह रहया परपूर, राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राहित जाहे, नानक तौ मोख अंतर पाहे, जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन मैं रंग किया, काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया, नील बसर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद हुए।

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणै कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नजर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक सो धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगाड़ो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देहे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो। तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करै। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीरे आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर कर ली।

मेरी जेहबा बिसरना नारायण हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गोसाई जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर गयाना तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै पासना देखै आग, काल फासना मुग्द चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा, आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाह स्वादत जी संघार, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ, साज कते बखाने, अल्लाह नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल कट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

जौ तन चीरा अंग न मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई आसा। कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछू ना होवे, ना ही राम एना।

नित नित मेंढकन आवै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैंतराई। दिन सनारैन बेदनी शास्त्र।

की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मान सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

आनीले दूध रिदाईले खीरं। ठाकर को नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय कराओ। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंग नरंगो सी मन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना, झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन परेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखया साध जा मैं ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलायो पाए। हर अवदास दास उदास, तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संतानंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते उच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तान, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ।

देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगता है। मन बच करामो रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रपै जानिया। धनै तर पाया तरनी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवां गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास ढोवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गणिया। एह बिद सुन कै जट रो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, बिबै ना जान सकोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुरदसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दियां शे मां तुड़न दियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आई है बिन नावै पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रह गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जा की भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके तिर पवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल मन मुख रहने आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रहै जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ, ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कवन खलावै कवन चुगावै। मन मैं सिवरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइयै। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग

ਹਰ ਧਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਧਨ ਗਿਆਨ, ਹਰ ਸੰਗ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਤੁਲਹਾ, ਹਰ ਧਨ ਬੇੜੀ, ਹਰ ਹਰ ਧਾਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ, ਹਰ ਧਨ ਲਾਇਆ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਨਿਤ ਪਾਈ, ਹਾਥ ਚਰਿਓ ਹਰ ਥੋਕਾ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕਹਿ ਸੰਗੇ, ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦੀ ਜਾਪੋ, ਜਾਂ ਕਾਂਤ ਨ ਪਾਰੋ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਾਓ ਤੁਮ ਕਹੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜਹੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕਹੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ, ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦੈ ਚਾਤਰਕ ਮੌਲਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਤਾ ਕਰੈ ਪੱਛਮ ਕੈ ਤਾਈ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਖਿਨ ਮੈ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨਹਾਰਾ, ਆਪਣ ਹਾਥ ਮਤਾਂਤ, ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਯਾਤ, ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ਰਹਾਓ, ਦੇਸ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋੜਨ ਕੀ, ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ, ਲਸਕਰ ਨੇਵ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ, ਜੰਪਰ ਉਠ ਸਿਦਾਸ, ਹੋਇਆ ਨਨ ਮਨ ਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਆਪਸ ਕਉ ਜਾ ਨਾਤ, ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਓ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਖਾਤ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤੇ ਜਨਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਜਨ ਜਪਿਓ, ਤਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਟੇ, ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਾਇਓ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਹਾਓ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਓ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ, ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ, ਜੋ ਜੁਗਤ ਨੀਸਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਥਾਈ, ਆਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਰੰਗ ਰਵਿਓ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਖਨ ਭੀਤਰ, ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਭਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਟੈ ਰਹਾਓ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਸੰਗਮਨ ਵਾਇਤ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਜੀ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜੀਆਰਾ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਸੂਜੀ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਭੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਚ ਪਦਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ, ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ, ਸੰਗ ਨ ਕਛੂ ਜਾਇਆ, ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਨਾਮਾ, ਜੀ ਕੋ ਇਹ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ।
इष्टमीत बंद पसुत भाई संग मलता रच हसया जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोइना रूपा दामा पहाड़ी का ओ पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बेराना हैवर गैवर रथ संभाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे नाम तानो नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाई नाम संपत गुरु नानक कहो दी ओह मरे ना आवै जाई गुजरी महला पंजवां ते पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दरडाया बिरसना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे पहे कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पहर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हर सोग दोह माहे निराला करने हर पिछाता जिसका साथ इन्हीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देओ त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमियारो गुजरी महला पंजवां है नाही को बूझन हारो जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा गुजरी महला पंजवां मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो शरण परयो नानक ठाकर की आपै दान सुख पायो गुजरी महला पंजवां दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हर ठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह कै संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परै परीला गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपन ही तीन देव अर कोड़ ते तीसा तिन की हैरत कछ ना रही बलवंत ब्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साथ ते भागी ओए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवां दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ
मिलवर नारी मंगल गाया, ठाकर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंधप, तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ ना चाले पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहे तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम होत जावै, प्रभ सेती रंग लाई, मन को एह उपदेश दरड़ावै, सहज सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति, नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावै, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थापो था पनहारा, कीमत जाय ना करी, राजा रंक करै खिन पीतर, नीचे जो तरी। त्याई है अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करिए, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी, अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा, तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, चरण कमल रिदमाए सुमाए, तै परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम सुमाराओ, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, होर आस बिडाणी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो, उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा, ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा, आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है, जमकी त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है। जाते काल न बिरथी जाइए, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा, विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे पंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रखै, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा, जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करता,

केते उदर परन कहताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई, ऐ जी काल सदा श्री उपर ठांडे, जन्म जन्म वहराई, सच है शब्द रते से बाचे, सतगुर बूझ बुझाई, गुर शरण आई जोहे ना साकै, दूत न सकै संताई, अवगत नाथ।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया हरि उत्तम पद पाया सतगुर सेव हर नाम मन वसाया अंदर नाम पियाया विचे ग्रह गुरबचन उदासी हो मैं मोह जलाया आप तरिया कुल जगत तराया तन जने दी माया ऐसा सतगुर सोई पाए जिस तुर मस्तक हर लिख पाया जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों जिन भ्रम पुला मार्ग पाया महला तीजा त्रै गुण माया वेख पुले जो देख दीपक पतंग पचाया पंडित पुल पुल माया वेख दिखा किने केहो आन चढ़ाया दूजे पाए पड़े नित बिखया नाम दईये खुआया जोगी जंगम सन्यासी पुले ओना अंकार बहु गर्भ वधाया शादन भोजन ना लही सत पिखया मन अठ जन्म गवाया एतड़िया विचों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया जन नानक किसनों आख सुनाई है।

कड़ी मोहतन है विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर वीर वरियाम केने ना होड़ी है फौसतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराद बिखम दल फोड़ी है हों तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किलविख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे पूरी होवै जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परमगढ़ तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया नाम निदानिया खुट गुर दे दारुओ महारोग बिकराल उतने बिदारुओ पाया नाम निदान बहुत खजानिया जिता जन्मया पार आप पछानिया महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव सलोक महला पंजवा उद्यम करेंदिया जियो तू कमावद।

प्रभदास का दुख ना खप सकै, फड़ जोनी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुते, दुख लगै बिललाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो, जल थल पूर्ण सोए, नानक नाम ते आया बिघन लागै कोए। महला पंजवां। कोट बिघन तिस लागते, जिसनों विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते, ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया, पाया नाम निदान जिसनों पालदा, जोत मिली संग जोत रहया कालदा, सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुरप्रसाद नानक सच समाया, सुध राग गुजरी भगता की बाणी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जी ओका चौपदा कर दूजा, दूजा चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है, हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नकन टूटे कंधन, कोदव को पुस खई है, रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया, अजहो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है, दुख सुख करत महाप्रम बूडो, अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, एहो अवसर कत पई है, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रहन बिहाई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस

दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजै पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो,

रमैया आकुल रीबाई रहाओ, ज्यो आकाश पंखिया लो खोज निरखियो ना जाई, ज्यो जल माजे मछलो मार्ग पेखणो ना जाई, ज्यो आकाश कड़ुवलो मृग तृष्णा भरिया, नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया, गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो, माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो रहाओ, मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा, धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा, तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी, गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम सान की पसम लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़ियारे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयंग रहाओ इच्छ सजमाद परा भयंग जस स्वस्थ सुकृत कीर्तंग पाव भूत भाव समग्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग लोभाद दृष्ट पर गिरहंग जद विद आचरणंग तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणंग हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवपूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधियारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

कित गली हर के संत बतावो मार्गो, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावलो, तिस कारण हर ढोली है। कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा, अमोल पदार्थ ला दियो, बलिहार है नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा दियो। देव गंधारी पंजवा, माई जो प्रभु के गुण गावे, सफल आया जीवन फलता को, पार ब्रह्म लिबलावे। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे, नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे, पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह, आना दृष्टि आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे, देव गंधारी पंजमा, चंचल सुपने ही उर जायो। इतनी ना बुझे कबहू, चलना बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा, सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मनै सुधारन, ए आसर मोय तरना। रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा, बहुर ना गर्भ परना, सफल मूर्त परसो संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कहिऐ, चार पदार्थ अनंद मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लहिऐ। रहाओ मान त्यागो, हर चरनी लागो, तिस प्रभ अंचल गहिऐ, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अहिऐ। कोट प्राद महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा। रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनास, कोट मजन इशनाना, नाम निधान गावत गुण गोविंद, लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेनो देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे, मन ते कहो न डारो। रहाओ साधु तूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकरे अबनासी, कलमल सगले चारो, नाम निधान नानक दान पावो, कंठ लाए और तारो। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा, सुंदर ध्यान तादर रहनी, जी प्राण ते प्यारा। रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके, सिमरत तत् विचारा, दीना नाथ प्राण पथ पूर्ण, पावजल उदर नहारा, आद जुगाद भगत जन सेवक, ताकि बिखै आधारा, तिन जन की धूर बांछै नित नानक।

प्रेम रसाने जाको उपजी, छोड़ न कत हूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर, हर रस भोजन खाता। अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक, पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा, माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते, मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो, बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावै बिन सतसंगत, किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा, साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन पीतर, नानक हर दर्स समाई है। देव गंधारी महला पंजवां, ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेसर, सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन कहो बल जाइए, जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया, पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया, रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी। हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजे, मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी, सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां प्रभ एह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पाव तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लई है। राग देव गंधारी महला पंजवां कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सदी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थी ते सद थाए। देव गंधारी पंजवां दर्शन नाम कौ मन याचै प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछै रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुराछै। देव गंधारी पंजवां अमृता प्रवचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहु मद निरारे रहाओ। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवां हर जप सेवक पारे उतारियो दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवां कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां एको अंकार सतगुर प्रसाद मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा आना समसर को लागे ढूंढ रहे हम ऊंचा रहाओ। बहु बेअंतत बड़ो बाह गाहरो था नहीं अगहूचा तोल ना तुलिया मोल ना मुलिया कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवां मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाही रीको खंड दीप सब पितर रवे।

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावे गो, हर जी को द्वार। मिल संगत तज अभमान, कहो नानक पाए है परम निधान। देव गंधारी पंजवा, जानी ना जाई ता की गात रहाओ। कह पे खाराओ हाँ कर चतराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक। चतुर्वेद उचर्द दिन रात, अगम अगम ठाकरे आगाद। गुण बेअंत बेअंत पन नानक, कहन ना जाई परै परात। देव गंधारी महला पंजवा, त्याए गाए करने हार। पौ नाही सुख सहज आनंदा, अनक ओही रे एक सुमार रहाओ। सफल मूर्त गुर मेरे माथे, जत कत पेखो तत साथे। चरण कमल मेरे प्राण आधार, समर्थ्या था बड़ा प्र मेरा। कड़कड़ अंतर साहेब नेरा, ता की सरण आसर प्रभ नानक। जाका अंत ना पारा वार, देव गंधारी महला पंजवा। उल्टी रे माने उल्टी रे, सागर से कर उल्टी रे। झूठे की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे। साकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर पर मंदर राखेओ, जो पैसा कालू खीरे। दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। मांगो दान किरपाल किरपा निद, मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पगां हेठ रुलसी रे। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समर्थ पंथ बिठले, हों बल बल जाओ। गावन पावन संतन तोरे, चरण उमा कह पाओ। रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं, एक अनंत अनुपैठाओ। रिद सिद्ध निद करतल, जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ। दया मया कृपा नानक कहो, सुन सुन जस जीवाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग देव गंधारी महला नावा, यह मन नैक ना कहो करे। सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत ते ना टरे रहाओ। मद माया कै पयो बावरो, हर जस नहे उचरे। कर पर पंच जगत को डहके, अपनो उदर भरे। सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान तरे। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरे। देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंदप, आरफुन गृह की नार रहाओ। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। आद करी को न रखे, करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते हो ते उधार। देव गंधारी महला नावा, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ। मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत। अंतकाल संगी नह को, ए अचरज है रीत। मन मूर्ख अजू न समझत, सिख दे हार्यो नीत। नानक पौ जल पार पर, जौ गावै प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूर्त अजूनी।

गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तप तो थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद विनोद सद ही गुण गोपाल नित गाई भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतू ना जाया बिहागड़ा महला पंजवां संत सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम दुख हरण कृपा करण मोहन कल कले सह भंजना शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम माया मोहे मगन कड लिहो मुरारी राम लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी नानक शरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी जां ते विछड़िया तिन्हां मिलाया राम साधु संग में हर गुण गाया राम गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया बिहागड़ा महला पंजवां संत बोल सो तरमीड़िया मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चले बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद परे जागत कत नाही राम माया झूठ रुदन केते बिललाही राम बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत से

हर चंद दौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केत्या पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए। पौड़ी

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है, आपे आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा कहे।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जै, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने। आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने। एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़े आई, से जन सच्ची दरगह जाने। श्लोक मर्दाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह।

संध्या नानक संध्या करे मन मुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार। महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए। पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया। आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया। श्लोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे। महला पंजवां घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल। पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्त्या स्वामी आप जपाए नाम। आप दयाल हुए पौखंडनो आप करे सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगह पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनस जलत बिहाए जो तिस भावे सो थीऐ कहना किछु ना जाए। महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारा होए कै सब संभाले हो। साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो। सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक हथ है सुख है अंदर रखसी अगे हर स्यो केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठार बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए। जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनों तिल ना तमाए। श्लोक महला तीजा।

आपे सतगुर मेल सुखदेव है, अपना सेवक आप हर भाव है, अपनिया सेवका की आप पैज रख, अपनिया भगता की पैरी पावै, धर्म राय है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ न आवै, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, होर केती चख चख आवै जावै। श्लोक महला तीजा। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, आगमा गोचर अत बुड्ढा अतुल ना तुलिया जाए, कीमत कने ना पाईया कितना लिया जाए, गुर कै शब्द भेदया इन विद वसिया मन आए, नानक आप अमेव है गुर कृपा ते रहा समाए, आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा। ए मन एहो तन नाम है, जित सदा सदा सुख होए, तोटा मूल ना होवई तोटा मूल ना होवई, हानत कदे ना होए, नानक गुरमुख पाई है, जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर, आपे गुप्त वरतदा आपे ही जाहर, जोग छत्ती गुबार कर वरतिया सुन्ना हर, ओथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हर नर हर, बैठा ताड़ी लाए

तिचर ना चेतई के करे गो अग्गै जाए। ज्ञानी होए सो चेतन होए अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथै कमावे सो मिलै अग्गै पाए जाए। महला तीजा तुर खसमै का हुक्म पया विण सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिलिया अंतर रव रहया सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए। जन मरण का भउ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए ध्याना। आपे मोनि वरतदा आपे कथै ज्ञाना। कौड़ा किसे न लगई सब नाही पहना। उस्तत बरना सकी सत कुरबाना। श्लोक महला पहला। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुटी जाही नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंधे अंधार पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे तुम कहां तरन हार। पौड़ी

तेरे दर्शन विटों खनिया वन्या, तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं मान किया है, तुद बिन कहा मेरा मानो, चूड़ा पन

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मने ता हर मिले ता विचों हम मैं जाए रहाओ। हम मैं सब शरीर है, हम मैं उपत होए, हम मैं वड्डा गुबार है। हम मैं विच बुझ न सके कोए, हम मैं विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हम मैं विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिलिया हम मैं गई, ता सच वसिया मन आए। सच कमावै सच रहै, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हम वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण

नानक गरीब राखो हर मेरे। वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हौ क्यों कर पिर कौ मिलो इयानी। जो पिर भावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हौ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हौ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण पर्यो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेख साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना, नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी।

पूरे, जे सौ खेल खिलाइए बालक रह ना सकै बिन खीरे। मेरा अंतर पुखना उतरे अमाली, जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मंत्र प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई, मैं मेलो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सब बेदन जाने, नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सका, जो चात्रक जल कहो बिललाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण कहो रख लेता। हाँ पही उड़ीनी कंत कहो अमाली, सो पिर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। एहो कापड़ ताना सुखा वही, कर ना सको हों वेसा। जिनी सखी लाल रावया प्यारा, तिन आगे हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम न आए। जां सह बात न पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सौ रिया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तोमा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली, ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखां सुख पाया अमाली, फिर सर्व रहा पर पूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कह लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदियां, एको अंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच तुहन, सच शब्द विचारा। अंधन सच सलाहना, तन तन वड पाग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ, दासन दासा होए रह ता पावे सच्चा नाम रहाओ। जेवा सच्ची सच रती, तन मन सच्चा होए। बिन साचे होर सलाहना, जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना, साचा वापारा। आंदन लाहा सच नाम, तन भगत भरे पंडारा। सच खाना सच पहनना, सच टेक हर नाओ। जिसनो बख्से तिस मिले, मैली पाए थाओ। आवे सच्चे जावे सच्चे, फिर जोनी मूल ना पाहे। गुरमुख दर साचा सचिया रह, साचे माए समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा, सच्ची सिफत सुनाए। सच्चा थान सच सलाहना, सदगुर बलिहार जाओ। सच वेला मूर्त सच, जित सच्चे नाल प्यार। सच वेखना सच बोलना, सच्चा सब आकार। नानक सच्चा मिले ता मिले, आपे ले मिलाए। ज्यों पावे त्यों रखसी, आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा, मनुआ दे दिस्तावंदा। ओ कैसे हर गुण गावे, इंद्री व्याप रही अधकाई। काम क्रोध नित संतावे, वाह वाह सहजे गुण रवीजे। राम नाम इस युग में दुलभ है, गुरमत हर रस पीजे रहाओ। शब्द चीन मन निर्मल होवे, ता हर के गुण गावे। गुरमति आपे आप पछाणे, ता निकर वासा पावे। ए मन मेरे सदा रंगराते, सदा हर के गुण गाओ। हर निर्मल सदा सुखदाता, मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पहे, हर की सरनाई। पाथर डुबदा काढ लिया, साची वड़ियाई। बिकसे अमृत पहे, गुरमत बुद्ध पाई। अको परमल पहे, अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दुलंब है, जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ते आए। मनमुख पूले बिख लगे, अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना पाया। मुखों हर हर सब को करे, विरले हृदय वसाया। नानक जिन कै हृदय वसया, मोख मुक्त तिन पाया। वडहंस महला।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब पाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाईया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाईया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत परम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेता नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेता मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम नायक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सह समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सा

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जामया बुझावै दुख भुख संसार किए, सासै हो चुकावै। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा। तेरे बंके लोयन दंतरी साला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला। कंचन काया सोने की ढाला, सोवन ढाला कृष्ण माला। जपो तुसी सहेलियो, जम द्वार ना हो खड़िया, सिख सुनो महेली हो।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वड़हंस महला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सबिन से हो मैं पापा राम। जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरुत पे

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़पागी लंघाए गुर खेवट शब्द दराए आन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे हे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जन आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोहै हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देहे कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद

हर मने मीठा प्रभु तुठा अम्योग उठा सुख पय दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिए मन्या जिन कट मेरा हर प्रभु उठा सलोक जो लोड़ींदे राम सेवक सही कंडिया नानक जाने सत साई संतना बाहरा शंत मिल जल जलै खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आपे आपे जानी है तह सुन सहि समाध लागी एक एक वखाणी है आप भुगता आप मुगता आप आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलै खटाना वडहंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रख जगत सगल दे हथा राम समरथ सरना जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हाँ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता वर्ण चिहन न जाए लखिया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कारण समरथा एह जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम हरता राम प्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवै गुण निधान पावै सो बहुत जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर त्याई है राम मन इच्छ अड़ा फल पाई है राम मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है मिटै जमके त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मन मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिरमंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगमा गोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कहण न जाई कोय ना सकै पहुचा आप यो पाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुखनाम भगती दर वजे अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा अलाहणिया एको अंकार सतगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जगतंद लाया मोहलत पुन्नी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए काया हंस थिया वे छोड़ा जांदन पुन्ने मेरी माए जेहा लिखिया तेहा पाया जेहा प्रभु कमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह हो जिन जगत अंदर लाया साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना हो पयाना ऐथे तंदा कूड़ा चार दिहाया गै सर पर जाना आगै सर पर जाना जो मेहमाना काहे गर्भ कीजै जित सेवे दरगै सुख पाई है नाम तसै का लीजै आगै हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या विहाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सब ना हो पयाना जो तिस पावै समरथ सोथी है हीलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सृजनहारो साचा सृजनहारो अलख्या पारो ताका अंत ना पाया आया तिनका सबल भया है एक मन जिनी तिहाया टाहे टाहे ओ सारे आपे हुक्म सवारन हारो जो तिस पावै समरथ सोथी है हीलड़ा हो संसारो नानक रुना बाबा जानिया जे रोवै लाए प्यारो वाले वे कारण बाबा रोई है रोवन सगल बेकारो रोवन सगल बेकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै चंगा मंदा के सूजै नाही ओ तन एवै खोवै एथे आया सबको जासी कूड़ करो अहंकारो नानक रुना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो वढ़ंस महला पहला
आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब समाले हां साहेब समाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन ही लिया हुआ तसै का पाना जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करेहा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां मरण न मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई भेटे स्यों जावो।

है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा किया, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आज्ञा दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखे साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखे आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, बड़हंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिसो चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिर जिनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिर जिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो, आवागमन सिर जिया तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया अवगुण का वणजारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मेलनहारो, रूप ना जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचे हंस गया गहनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलियो सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया तिर जीवन संसारे, जीवत मरै सो जानी है फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे, हाउ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया रूड़ै हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना हौ रह सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो, वड़हंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पालिया कड़कड़ शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो सो साहे परवानो, बाबा आया है उठ चलना अद पंदा है संसारो वा, सिर सिर सचड़ै लिखिया दुख सुख पर्व विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया सो नबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छड़ावन हारो, अज कल कर दिया काल व्यापै दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ।

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरे ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पाए ओनो।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणियारे सचड़ा आप जगत पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म पाया बाहर घर छोड़िया, खिर मैं पई पराई। नामदान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहाओ, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सवा मैं सहज ना चाखिया। जेबा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बादा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नजर करे ता अखी वेखा। कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरै टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुरलीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तैं जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एक त्रूप फिरै प्रसन्ना। कोई न किसी जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरु मैं तेरा देखिया। तू सबना माहे रवंता।

सेवक सेव करे सब तेरी, जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होवा, जिन विचों आप गवाया आन देन गुण गावे नित साचे, गुर कै शब्द सुहाया मेरे ठाकरो हम बारक शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी, रहाओ जागत रहे इतनी प्रपाया, शब्द हों मैं मारी गिरी मह सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत् बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राख्या उर तारी एहो मनुआ दे जस्तावंदा, दूजे पाए खुआया मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै, बिरथा जन्म गवाया सतगुर भेटे ता ना हो पाए, हो मैं मोह चुकाया हर जन साचे साच कमावै, गुर कै शब्द विचारी आपे मिल ले प्रभ साचे, साच रखिया उर धारी नानक नाम गत मत पाई, एहा रास हमारी सोरठ महला तीजा, भगत खजाना भगतन कौ दिया, नाओ हर तन सच सोए अखुट नाम कदे निखुटे नाही, अखुट नाम तन कदे निखुटे नाही, किने ना कीमत होए नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्द जग पुलदा फिरदा दरगह मिले इस जाए, रहाओ इस ते ही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लो मोहंकारा अमृत लूटै, मनमुख नहीं बूझै कोई ना सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा वाजगुरु गोबारा, हाँ मैं मेरा कर कर विगुते केहो चले ना चल दिया नाल, गुरमुख होवै सो नाम ते आवै सदा हर नाम समाल, सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नगर निहाल, सतगुर ज्ञान सदा घट चरण अमर सिर बाद साहा, अन दिन भगत करै दिन राती राम नाम सच लाहा, नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा, सोरठ महला तीजा।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करै प्रभावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन भाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझै विचारे निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो ले उबारे आप सको बहु भला कर जाने मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाणे जो चले पाई विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटे नाही गुरमुख मुख द्वारा कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै मर जन्मै वारो वारा हौ मेरा जग पलच रहया पाई कोई न किसी केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा एथे बुझै सो आप पछाणै हर प्रभ है तिसकेरा सतगुर सदा दयाल है पाई विण भागा क्या पाई है एक नदर कर वेखै सब उपर जेहा पाओ तेहा फल पाई है नानक नाम वसै मने अंतर विचों आप गवाई है सोरठ महला तीजा चौथके सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै आणी मनमुख फिरै सदा दुख पावै डूब मोए विण पाणी पाई रे सदा रहो सरनाई अपनी नजर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुर ते आप पछाता
ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਦ ਵਸਿਆ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰਾ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਜੋ ਜੁਗ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨੈ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਆਇਆ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਗਾਇਆ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮਗ ਪਛਾਣੈ, ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए, तोह कुटै मनमुख कर्म करै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या पाई, साची प्रीत प्यार, सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार, आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई भाई, गुरसब दी मेलाए, सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई, पूछो ज्ञानिया जाए। मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार, जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हरा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों वाप गवाए। एहो जग अंधा सब अंध कमावै, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाइए। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाइए। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओ

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बने आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता तूरी कौ बल जाई, एह मन तेरा भाई रहाओ। पाव मिलोवा मल मल तोवा, एह मन तै कु देसा। सुन मीता हौ तेरी सरनाई, आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा। मान ना कीजै शरण परिजै, करै सो पला मनाइयै। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाईऐ। भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। जन नानक कौ गुर कृपा धारी, सब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। प्रतपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व घटा पर पूरी रे। पेखत सुन तो सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हो मित कर वरनाओ, क्या जाना हो कैसो रे। करो बेनती सतगुरे अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भासना भरिया रे। सोरठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। सह सैन यार सुख मन नारी, ऊंद कमल बिगसया। देखो अचरज भया, जे ठाकर कहो सुनते अगाध बोध। सोरदय गुरदया रहाओ, जोए दूत मोहे बहुत संतावत। ते भयानक भया, करै बेनती राग ठाकर ते, हम तेरी सरनाया। जह पंडार गोविंद का खुलिया, जे प्राप्त ते लया। एक रतन मोको गुरदीना, मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर नाम वा। भगत भंडार गुरु नानक सौपे, फिर लेखा मूल नाम लया। सोरठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जा का मन लीना। से जन तृप्त अगाई, गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया। ते नर तृष्ण तरखाई,

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने, जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने। जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया, जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया। जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा, नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यो अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावै, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा रहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेरवाना। तुम करो भला हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम रखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्माने करनहार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पाने खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कह प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जेती समग्री।

सूरठ महला पंजवां मृत कौ पायो तन सासा बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई ता की कीमत कहन न जाई रहाओ दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा मन बाइथ।

जाय अपने सदगुर के मन पहाने। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम पागा। कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवां रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाई है। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची देह अज्ञानी रहाओ। मृग तृष्णा यार सुपर मनोरथ ताकि कछ ना वडाई। राम भजन बिन कामना आवस संग न काहूं जाई। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा जी को कामना कीना। तावत तावत नह त्रिपतासिया राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो असंख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवां गुण गावो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारे। महा बिखमो यगन को सागर साधु संग उदारे। पूरे गुर मेट्यो परमान देरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ। हर हर नाम निधान रस पिया मंतन रहे अगाई। जत कत पूर रहे हो परमेश्वर कत आवै कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला। नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला। काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जमकी फासा। कहो नानक प्रभ कृपा धारी मंतन भय बिगासा। सोरठ महला पंजवां करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी। सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुरु होवा आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज भई बढ़ाई रहाओ। गुर की शरण पए पै नासे साची दरगह माने। गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी। सद बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सवारी। गोसट ज्ञान नाम सुनि उदरे जिन जिन दर्शन पाया। पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवां प्रभ की शरण सगल पहलाथे दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सदगुर त्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला। गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान।

कछु ऐशानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा, बहुत जोन भरमत दुख पाया, हम मैं बंधन के पारा। दे के वा

आओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जनकी लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुणे अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखे पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास कौ कंठ लाए राखे जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आगे चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद शब्द गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होए

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिले।

हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ। हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जमका फासा, मन पूर्ण होई आसा। जै पेखा तै सोई, हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया, अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा। ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी, शरण सचे की ताकी। परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन होवा सदा सुखाला रहाओ। हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग बेदारू, अपनी कृपा तारी, तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया। गुर का शब्द पयो साखी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा। चप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी, सोरठ महला पंजवा। विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा होवा। मज्जन गुरे आंदा रासे, जप हर हर किल विखनासे। संतो रामदास सरोवर निका, जो नावे सो कुल तरावे, उदार हुआ है जी का रहाओ। जय जयकार जग गावे, मन चिंदे अड़े फल पावे। सही सलामत नाए आए, अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावे, सो जन परम गत पावे। मरे ना आवे जाई, हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जाने, जिस दयाल होए भगवान। बाबा नानक प्रभ शरण आई, सब चिंता गणत मिटाई, सोरठ महला पंजवा। पार ब्रह्म निबाही पूरी, काई बात न रहिया ऊरी। गुरचरण लाए निस्तारे, हर हर नाम समारे। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे, मात पिता ज्यो पाला रहाओ। फटभागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया। हर भगत पाए चित लागा, जप जीवै से वटभागा। हर अमृत बाणी गावै, साधा की धूरी नावै। अपना नाम आपे दिया, प्रभ करण हार रख लिया। हर दर्शन प्राण आधारा, एहो पूर्ण बिमल बिचारा। कर कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा। पतत पुनीत कर लीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला। हर दिन रहन कीर्तन गाइए, बहुना जोनी पाइए। जिस देवे पुरख बिदाता, हर रस्ते नहीं जाता, जम कंकर नेड़ ना आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे कीती पूरी, प्रभ रव रहया पर पूरी। खेम कुशल पया इस नाना, पार ब्रह्म विटो कुर्बाना। गुर के चरण कवल रिद तारे, बिघन ना लागे तिलका कोई, कार्ज सगल सवारे रहाओ।
मिल साधु दुर्मत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाई है साध संग मिल त्याई है मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीव है परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देस निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो भयो कृपाल सर्ब को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक कहो मैं पीत गुर खोई तौ दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्ब गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम परयो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारी तो

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हरि अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे जग जीवन।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे का सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवे, मेरे पूरे सदगुर भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा समाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, किरपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगै को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत ला, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, तां की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा, नानक प्रभ शरण आए, जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखां का दाता सतगुरु, ताकी सरणी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो, गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हरे अंतर जामी, जन अपने की रखै, जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखै।

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभु अपने पवनित पारे उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपा निध पूर्ण खसम हमारे रहाओ आओ बैठो आदर सब थाई ऊन न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वरगाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजो ना गुरजन सेवयो नहीं उपजो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारे ओ अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उतारो रहाओ अटल भयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा मेहमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सोनो निमख ना हिये बसावै। पर तहनो परधारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यो लागे। जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे।

कहो नानक हर बिरद पछाना भूले सदा परानी। सोरठ महला नावां जो नर दुख मैं दुख नहीं मन सुख स्नेहो अर्पण।

मनुआ पौन बिंद सुख वासी नाम वसै सुख पाई जह बा नेत्र सोत्र सच राते जल बूजी तुझै बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूड़ो रूड़ो आखिए पाई, रूड़ो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साचिया पूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिलिया सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लै हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करै प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सवार नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे करै ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवै जावै ठौर ना पावै, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवै सो अमृत पीवै, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधकाई, वेद पढ़ै तै वाद वखाणै, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटै गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया उर तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लय रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸਚ ਬਾਣੀ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चितलाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हरि आप वसै मन आए फिर का हुक्म ना जान नहीं पाई सा कुलखणी कुनार मन हठकार कमावनी पाई विणना में कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चा बैराग आंदन राते गुण रवे पाई निरपव गुर लिवलाग सब ना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साहि समाओ एत जन्म हर ना चेत्यो पाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोहायोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समालै सुख वसै पाई सदा सुख सांस शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने यो पाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक या कथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किश है पाई नौनिद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा गमया पार जी जंत प्रतपाल दा पाई नितनित करदा सार सतगुर पूरा भेटिया पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सिरेविए पाई परंप हो वै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुर बचनी सुखी उपजै पाई सफल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिए पाई हृदय होवै प्रगास प्रगट भया प्रताप प्रपाई मौल्या तरत आकाश गुरपूर संतोखिया पाई अहिंस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई निचर पाया था ओ जिस पर तीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेब पाई हों तिसके बल जाओ ओह निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूढ़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करवाओ तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਤੋਂ ਅੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਂਗ ਦੀ ਪਾਈ ਜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕੱਟਣ ਹਾਰ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਤਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਆਰਾ ਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिन तू विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियाण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस न जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टै पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म्या नेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहयो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म्या फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे कालहना तेरो सेवक हे रंग माता भयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया। श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है। श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोहठ गौली पाईयन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा। से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हमें लेखा मंगिया फिर आवै जाया, जिन्ना हरे आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुखी उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया बिना मैं जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिन कौ तुर लिख पाया। महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख्या गम है,
कहो कित बिद पाईऐ तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों तिहाईऐ निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाईऐ जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाईऐ गुरपुरै वे खालिया गुरसेवा पाईऐ श्लोक महला तीजा ज्यो तन कोलू पीड़िया रतना पूरी डेह जियो वन्या चौखनिया सच्चे संदड़ै नेह नानक मेल न चुकई राती अतै डेह महला तीजा सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठै कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग न उतरै ब्याह न लगै केहे पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर तंदै लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में ना

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सच्चा शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी। जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी, जो गुरमुख चक

वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकी नो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा,

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी। सोई सोई जागी जितलाई तितलागी, चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता काल अगाई, सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहचाना चूका। जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया। पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेहारे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लही है। बस्ता गोचर पाई, कट दीप करे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ओ ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पमने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अद शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले, खाट

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरव दास चुमारा, चमरटा गाठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगुचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पाव मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जैं देखा तैं सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार रहाओ, अंदन साहेब सेविया अंत छाए सोए, सुन सुन मेरी कमनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा, सदगुर बन जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए, ताकि सेवा सो करे जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई दे जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिसे आग्या प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहेब अपना, अवर न जाचों कोए, नानक तांका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे ना विटाओ, बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोत ना जाना, नानक बिन मैं तिसरे वो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार, देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है, पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है, भाल रहे हम रहन ना पाया, जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी, सिवरिया नहीं जाए, तपह आओ जियड़ा बिललाए। सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ, वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनों बख्से साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरै। गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै, फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रहे उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै।
जिसका जियो तिस आगै तरै साहिब पावै सो प्रवान सो सेवक दरगै पावै मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहेब कृपा करै सो सेवक जमते कैसा डरै। भणत नानक करे विचार साची बाणी स्यों तरे प्यार ताको पावे मुख द्वार जप तप सब एहो शब्द है सार। तनासरी महला पहला जियो तपत है बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मलिया त्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, संत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई ना पाए, मुलों भुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जु जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो होए जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज बिगोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन वड्याई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो साच संभाल्यो दुख जाए, साचै शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणे चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाने बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए, किसनो कहिए दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुवे कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर देह वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲਣਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਓ। ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚਰ ਤੇ ਅਹਿਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਚਹੋ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਹਿ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖ ਕਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਾਉ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੀ ਐਸੀ ਬਸ ਕਰੀਜੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਾਮੀ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਖ ਮੋਰ ਚਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ, ਜੋ ਕੰਚਰ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਘਾਟੀ ਕਟਤੇ ਉਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਉਰ ਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ। ਜਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਤਿਨਕਾ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ। ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਤ ਹਰ ਸਵਾਮੀ। ਤੁਮ ਠਾਕਰ ਹਮ ਸਾਂਗੀ, ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ।
हम तैसे बुलक बुलागी, क्या हम किरम नानक कीरे। तुम वट पुरख वडागी, तुमरी गतमित कह ना सकै प्रभ। हम क्यों कर मिलया भागी, हर प्रभ स्वामी कृपा तारो। हम हर हर सेवा लागी, नानक दास संदास करो प्रभ। हम हर कथा कथागी, तनासरी महला चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सतगुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब के लिविख पाप लह जानी रहाओ, ऐसा संत साध जिन पाया। ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी। हम हर लोच लुचानी, हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी। जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से। सब लाथी पूख पुखानी, जिनके वडे भाग वड उचे। तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी। जन नानक दा दसानी, तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै अपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ। मत जानो वाज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम सा जना पगराली, तनासरी महला चौथा। हर हर बूंद पय हर स्वामी, हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिनो रह न सको एक राती, जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ। तुम हर सर्वर अत अगाह, हम लह न सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी, मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो, गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा, हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावै पाती। नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा। कलयुग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूटै हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जपयो तरै तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर, लग संगत साध जना की। दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दास दसा की। तनासरी महला चौथा। कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। उर धार विचार मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने।
अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपूरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पय हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्याव इव हर प्रभ मेरा पीने तनाश्री महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावै फिर जन्म ना आवै हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन राम नाम हर जस उत्तम काम जो गावै सुने तेरा जस स्वामी हम तिनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मानो सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा

तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे।

ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोजी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन, बिनसो टीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा, जल थल महियल सर्व निवासी, नानकर मैया डीठा, तनासरी महला पंजवा, जब ते दर्शन पेटे साधु, भले दिनस ओए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो, भयो प्रगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो रहाओ।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवां जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ विद नेकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवां वडे वडे राजन यार भूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूजी। बिखिया मह किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई। रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकी मिटै ना भूखा। उद्दम करै सवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी परगरे जोहन चूकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवां लवै न लागन कहो है कछुऐ जा को फिर एहो तावै। जा को गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै। जा को आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा। रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई। बरन ना साको उस ताकी कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आय चिंता। जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया।

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखै ठगौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समार विश्राम निद पाई। तुम करो

खोजै सब ता कहो बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर उर्द ताप लै गैन एह बिदन है पतियानो ठाकर जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल हर जस तिन पायो जिस कर पैन साध संग रंग प्रपेट नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै हर हर नाम सुनावै अस्त्र करे निचल एहो मनुआ।

है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री महल।

जा कै संग तेरे बंधन छूट गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कछ पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजै।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ, चंदन चोवा रस भोग करता नेकै बिखिया बेकार देखो सगल है फीके, एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेश लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे, चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे, तनासरी महला पंजवा कार अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले रहाओ, निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले, तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोबिंदा, अमृत हृदय सिंचाई नाम ने दरिद सिधार लाग रही जन पाई, संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई रहाओ, ता को कोई न पहुंच नहारा जा कै अंग गुसाई, जम की त्रास मिटै जिस मृत नानक नाम ते आई, तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्ब देह गर्ब भूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा त्यों हर जन टेक स्वामी, जे को अपनी उड़ सुमार जैसा बित तैसा हुए वर्त, अपना बल नहीं हार रहाओ, आन त्याग पय के आसर सरन सरन कर आए, संतान अनुग्रह

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जां का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहिस मावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करे मान खुड है कावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने जा कै मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मै तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्स पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो रखन हार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखै महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी न देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवां मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवां तृष्णा बुझे

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिलै मिलिया प्रवान नात स्मरण ना आवण जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर सच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिलै मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घर पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पयावै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए।